0: ఈ మాసపు పాట విన్నారు. రచన శ్రీ ఇంద్రగంటి శ్రీకాంత శర్మ, సంగీతం శ్రీ కలగా కృష్ణమోహన్, గానం శ్రీమతి ప్రసన్నలక్ష్మి. ఈనాటి ఈ మాసపు పాట ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ కేంద్ర సమర్పణ. ఆకాశవాణి విజయవాడ కేంద్రం, సమయం 8 గంటలు కావస్తోంది. కొద్ది క్షణాల్లో హిందీలో, అనంతరం ఆంగ్లంలో వార్తలు ప్రసారమవుతాయి. ఢిల్లీ కేంద్రం నుంచి రిలే.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सभी युद्धग्रस्त देशों से मौजूदा संघर्षों के दौरान तनाव कम करने और ऊर्जा तथा व्यापारिक मार्गों से सुरक्षित आवागमन जारी रखने का आह्वान किया. रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के दावे का पुरजोर समर्थन किया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे. सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आज खुले रहेंगे. उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट. खराब मौसम के बीच चार धाम यात्रा स्थगित. और भारत वेस्टइंडीज के बीच 3 मैच की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मुकाबला आज दोपहर तिरुवनंतपुरम में. और अब समाचार विस्तार से. विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि मौजूदा संघर्षों के बीच सभी पक्ष संयम बरतें, तनाव कम करें और आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करें. संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए डॉ जयशंकर ने सभी युद्धग्रस्त देशों से मौजूदा संघर्षों के दौरान तनाव कम करने और ऊर्जा तथा व्यापारिक मार्गों से सुरक्षित आवागमन जारी रखने का आह्वान किया. एक रिपोर्ट.
2: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इस दौरान रूस यूक्रेन संघर्ष का जिक्र करते हुए कहा कि ये युद्ध अब भी अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय है. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संघर्ष समाप्त करने के आह्वान को दोहराया. उन्होंने वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर हमलों को अस्वीकार्य बताया. आतंकवाद पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत को आतंकवाद से अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार है. उन्होंने सीमा पार आतंकवाद को वैश्विक व्यवस्था के लिए सीधी चुनौती बताया और आतंकवाद के वित्त पोषण पर रोक लगाने की आवश्यकता पर जोर दिया.
3: आतंकवाद शांति के लिए लगातार खतरा बना हुआ है. अगर इसे किसी देश का समर्थन हासिल हो और इसका मकसद सीमा पार हमले करना हो, तो ये वैश्विक व्यवस्था के लिए सीधी चुनौती बन जाता है. ऐसी

0: गतिविधियों में शामिल सरकारों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। आतंकवाद के प्रति कड़ी नीति में कोई ढील नहीं दी जानी चाहिए। खासकर इसके वित्तीय पहलुओं का पर्दाफाश किया जाना चाहिए और उन्हें रोका जाना चाहिए।
1: श्री जयशंकर ने कहा कि ग्लोबल साउथ के सामने खाद्य, ईंधन, उर्वरक और वित्त से संबंधित बड़ी चुनौतियां हैं। उन्होंने बताया कि भारत 78 देशों में करीब 600 विकास परियोजनाओं में सहयोग कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि हर देश को अपनी जरूरतों के अनुसार AI विकसित करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। समाचार कक्ष से पायल शर्मा।
2: रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि रूस सुरक्षा परिषद में एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमरीका का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के पक्ष में है। रूस भारत और ब्राजील को स्थायी सदस्य बनाए जाने का समर्थन करता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 138वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसका प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद प्रादेशिक भाषाओं में भी इसे प्रसारित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के क्षेत्र में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और लगातार जारी रहने वाले समर्पण से संभव हुआ है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए ये समर्पण लोगों की जिंदगी बदल रहा है। आज अपनी विशेष श्रृंखला में हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना पहल के जरिए इस सपने को कैसे वास्तविकता में बदला गया है। एक रिपोर्ट।
3: तमिलनाडु देश के प्रमुख सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSME राज्यों में से एक है। राज्यों में कारोबारी एक ही पोर्टल से अलग अलग विभागों से जरूरी मंजूरियां ले सकते हैं। MSME के विकास के लिए राज्य में अलग मंत्रालय भी है। MSME क्षेत्र देश की GDP में करीब 31% का योगदान देता है और कृषि के बाद रोजगार देने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। कोयम्बटूर में विनिर्माण, कपड़ा और इंजीनियरिंग से जुड़े 80,000 से अधिक पंजीकृत MSME है। कोयम्बटूर के लीड बैंक के जिला प्रबंधक कार्तिकेय ने आकाशवाणी को बताया कि मुद्रा योजना शुरू होने के बाद जिले के उद्यमियों ने कारोबार और उत्पादन बढ़ाने में काफी रुचि दिखाई है। उन्होंने कहा कि मुद्रा योजना की 4 श्रेणियों में मिलने वाले ऋण से उद्यमियों को कारोबार बढ़ाने और वित्तीय जरूरतें पूरी करने में मदद मिली है। तमिलनाडु में कुल 7,59,847 सूक्ष्म, 1,01,861 लघु और 2,818 मध्यम उद्योग पंजीकृत हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
2: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
4: आपका स्मार्टफोन हो या हेडफोन, अप्लायंसेस हो या कार, क्या वो रॉकेट जो आपके डिवाइस पे सैटेलाइट सिग्नल्स भेजता है? हर वो चीज जिसे पाने के लिए हम कभी दुनिया की तरफ देखते थे, आज खुद बनाते हैं और पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं। एक सोच से शुरू हुआ ये सफर और 12 साल में इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 6 गुना बढ़ी, मोबाइल फोन्स 32 गुना और एक्सपोर्ट्स 84% बढ़ गए। मेक इन इंडिया ने इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर दी एक मजबूत पहचान।
5: भारत ग्लोबल बिजनेसेस के लिए नए अवसरों का केंद्र बन रहा है, इसलिए मेक इन इंडिया, इनोवेट विद इंडिया, स्केल फॉर द वर्ल्ड।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए आज सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खुले रहेंगे। एक रिपोर्ट।
6: यह निर्णय बैंक कर्मचारी संगठनों के संयुक्त मंच यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल को देखते हुए लिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने रविवार को सभी बैंक शाखाओं, कार्यालयों, एटीएम लिंक शाखाओं और बैंकों तथा एटीएम के लिए नकदी हेतु करेंसी चेष्टों की पूरी तरह से चालू रखने की स्वीकृति दी है। इस बीच सार्वजनिक क्षेत्र

0: क्षेत्र के कई बैंकों ने हड़ताल के दौरान एटीएम से निःशुल्क मासिक सीमा से अधिक बार लेन देन का शुल्क माफ करने का निर्णय लिया है। समाचार कक्ष से मैं इशिका।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज केरलम जाएंगे। इस दौरान वे कोल्लम में अमृतानंदमयी मठ में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति का दोपहर में बालारामपुरम में श्री उथराडोम थिरुनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज के दीक्षांत समारोह में शामिल होने का कार्यक्रम है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के मुद्दे को लेकर विपक्ष पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। श्री नवीन ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि एसआईआर का निर्णय आयोग ने सर्वसम्मति से लिया है। आज विश्व पर्यटन दिवस है। इस वर्ष विश्व पर्यटन दिवस का विषय है पर्यटन को नए रूप में विकसित करने के लिए डिजिटल एजेंडा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये थीम पर्यटन के भविष्य को आकार देने में तकनीक की भूमिका पर जोर देती है। एक रिपोर्ट।
2: भारत का पर्यटन क्षेत्र देश की आर्थिक तरक्की, रोजगार और लोगों की आजीविका का महत्वपूर्ण साधन बन गया है। देश की जीडीपी में पर्यटन का 5% से अधिक योगदान है। साल 2025 में भारत में घरेलू पर्यटकों की संख्या 428 करोड़ से अधिक हो गई है, जबकि विदेशी पर्यटकों की संख्या 2,50,00,000 से अधिक हो गई है। भारत ने डिजिटल पर्यटन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ई वीजा और इनक्रेडिबल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसी सुविधाएं शुरू की गई है। भारत ने 2014 में ई वीजा की शुरुआत की थी, जिससे विदेशी पर्यटकों के लिए भारत आना आसान हो गया है। इस समय 172 देशों के नागरिकों को यह सुविधा उपलब्ध है। नई दिल्ली में आज होने वाले मुख्य कार्यक्रम में पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर्यटन क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कई नई योजनाओं की शुरुआत करेंगे। इन पहलों का उद्देश्य टिकाऊ और समावेशी पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ पर्यटन के क्षेत्र में नए अवसर पैदा करना है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश की आशंका है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़ और मध्य प्रदेश में बारिश की संभावना है। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश के कारण आज चार धाम यात्रा स्थगित रहेगी। एक रिपोर्ट।
3: मौसम विभाग के अनुसार आज राज्य के सभी जिलों में गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली और तेज हवाएं चलने की संभावना है। हवाओं की गति 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। पिछले 24 घंटों में उधम सिंह नगर और नैनीताल में सबसे अधिक वर्षा हुई। लगातार बारिश के बीच प्रदेश के अधिक ऊंचाई वाले हिस्सों में बर्फबारी भी हुई है। इस बीच मौसम की चेतावनी को देखते हुए राज्य में आपदा प्रबंधन तंत्र सतर्क है और संवेदनशील क्षेत्रों, नदी नालों तथा जल भराव वाले इलाकों पर निगरानी रखी जा रही है। मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम में अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से जारी मूसलाधार वर्षा से कई जिलों में सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बारिश से जुड़ी घटनाओं में अब तक 15 लोगों की मौत की खबर है।
4: गुरुवार से शुरू हुई मूसलाधार बारिश राजधानी लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, श्रावस्ती और इटावा समेत राज्य के कई हिस्सों में जारी है। 63 जिलों में सामान्य से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है, जिससे जगह जगह जलभराव हो गया है और जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। राहत आयुक्त डॉक्टर ऋषिकेश भास्कर यशोद ने बताया कि पिछले 24 घंटों में राज्य में सामान्य से 19 गुना ज्यादा बारिश हुई है। भारी बारिश के कारण तापमान में भी भारी गिरावट आई है और फसलों, विशेष तौर पर गन्ना, धान और सब्जियों को काफी नुकसान पहुंचा है। मौसम विभाग ने आज पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए ऑरेंज अलर्ट और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: उड़ीसा के कई हिस्सों में जारी मूसलाधार बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति बनती जा रही है। नदियां उफान पर हैं और निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
5: जी धन्यवाद जागृति। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज दोपहर 2 बजे से तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा। दूसरा मैच 30 सितंबर को गुवाहाटी और तीसरा मुकाबला 3 अक्टूबर को न्यू चंडीगढ़ में होगा। इसके बाद दोनों टीमों के बीच 5 मैचों की 2020 श्रृंखला भी खेली जाएगी। और जागृति, अगर बात करें जापान में जारी एशियाई खेलों में, तो भारतीय पुरुष और महिला तीरंदाजी टीमों ने इस प्रतियोगिता में अपने अपने वर्गों के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। पुरुषों की तिकड़ी साहिल जाधव, गणेश मणिरत्नम और कुशल दलाल ने भूटान को करीबी अंतर से हराकर दक्षिण कोरिया के खिलाफ सेमीफाइनल में प्रवेश किया। महिलाओं की टीम चिकिता तनिपार्थी, ज्योति सुरेखा वेन्नम और प्रतिका प्रदीप ने कजाकिस्तान को हराकर दक्षिण कोरिया के खिलाफ सेमीफाइनल में जगह पक्की की। महिलाओं के शॉर्टबोर्ड स्पर्धा में भी शुगर शांति गायन और कमाली प्रकाश दोनों तीसरे दौर में

0: पहुंच गई हैं। भारत ने अब तक एशियाई खेलों में 4 स्वर्ण, 12 रजत और 14 कांस्य पदकों सहित कुल 30 पदक जीते हैं।
1: पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के डेरा इस्माइल खान जिले में कल एक विस्फोट में 12 लोगों की मौत हो गई और 35 घायल हो गए। तहरीके तालिबान पाकिस्तान टीटीपी ने हमले की जिम्मेदारी ली है। और आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
2: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। जनसत्ता ने निर्वाचन आयोग की बैठक को प्रमुखता दी है। विशेष गहन पुनरीक्षण के सभी फैसले सर्वसम्मति से लिए गए। दैनिक भास्कर ने डिफेंस रिफॉर्म शीर्षक से लिखा है, रक्षा सौदों की मंजूरी में लगने वाले समय को घटाने की तैयारी में सरकार, छोटे रक्षा सौदों को कैबिनेट से छूट पर विचार। दैनिक जागरण ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर के बयान को प्रमुखता दी है, पाकिस्तान आतंकवाद का सीरियल प्रैक्टिशनर, कहा पश्चिम एशिया में व्यापारिक जहाजों और नाविकों को निशाना बनाना अस्वीकार्य। जापान एशियाई खेलों में भारत के प्रदर्शन पर हिंदुस्तान ने गर्व शीर्षक से शब्द दिए हैं। कबड्डी में भारत को दोहरा स्वर्ण, निशानेबाज और एथलीट भी चमके। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, कबड्डी में भारत का सोने पर सुहागा। राजस्थान पत्रिका ने विश्व पर्यटन दिवस पर विशेष खबर दी है, नींद, खामोशी, नो फोन और गांव की धीमी जिंदगी बनी लोगों की नई मंजिल। पहले दुनिया देखने निकले थे, अब दुनिया से दूर होने, मन की शांति के लिए करते हैं यात्रा। नवभारत टाइम्स ने स्वास्थ्य के नजरिए से एक शोध प्रकाशित किया है, चाय के साथ रोज 100 ग्राम नमकीन बना सकती है बीमार। पैकेज चिप्स, नमकीन, इंस्टेंट नूडल्स, मीठे फ्लेवर्ड ड्रिंक्स और प्रोसेस्ड मीट में कैलोरी ज्यादा है।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सभी युद्धग्रस्त देशों से मौजूदा संघर्षों के दौरान तनाव कम करने और ऊर्जा तथा व्यापारिक मार्गों से सुरक्षित आवागमन जारी रखने का आह्वान किया। रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के दावे का पुरजोर समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आज खुले रहेंगे। उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट, खराब मौसम के बीच चार धाम यात्रा स्थगित। और भारत वेस्टइंडीज के बीच 3 मैच की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मुकाबला आज दोपहर तिरुवनंतपुरम में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Saira Mujtaba. The headlines. External Affairs Minister S. Jayashankar calls upon all warring nations to de-escalate tensions and keep energy and trade routes open during ongoing conflicts. Russia strongly backs India's claim for permanent seat in UN Security Council. Prime Minister Narendra Modi to share his thoughts in Mann Ki Baat program on Akashvani at 11 a.m. today. All public sector banks and regional rural banks to remain open today for convenience of customers. IMD issues red alert for very heavy rainfall in Uttarakhand. Chardham Yatra suspended in view of adverse weather conditions. And in men's cricket, first one-day international of 3-match series between India and West Indies to be played in Thiruvananthapuram this afternoon. And now the news in detail. India has called upon all parties to exercise restraint, de-escalate tensions, ensure protection of civilians and uninterrupted flow of energy and commerce during ongoing conflicts. Addressing the UN General Assembly in New York last night, External Affairs Minister S. Jayashankar pointed out that the repercussions of wars are experienced far outside the borders of directly engaged nations. He said, hostilities continue to destabilize global security, threatening progress and slowing development far beyond their immediate regions. Dr. Jayashankar said India is prepared to do everything possible to help improve the situation, particularly in areas of food and energy security.
4: We remain deeply concerned over continuing hostilities. The targeting of commercial shipping and seafarers transiting international waterways is simply unacceptable. India calls upon all parties to exercise restraint, de-escalate tensions, ensure protection of civilians and uninterrupted flow of energy एंड कॉमर्स।

0: కర్ణాటక సంగీత సభ కార్యక్రమంలో మీరింతవరకు శ్రీమతి చల్లా ప్రభావతి గారి వయలిన్ వాద్యం విన్నారు. ఈనాటి కర్ణాటక సంగీత సభ కార్యక్రమం ఆకాశవాణి కడప కేంద్రం సమర్పణ, విజయవాడ కేంద్రం నుండి వెలువడింది. ఆకాశవాణి 20వ ఆసియా క్రీడలు 2026 రోజువారీ ముఖ్యాంశాల సమాహార ప్రత్యేక కార్యక్రమం ఇప్పుడు వింటారు.
1: कुछ मुकाबले सिर्फ स्कोर बोर्ड पर दर्ज होते हैं और कुछ मुकाबले किसी खेल की पहचान बन जाते हैं. आईची नागोया के एशियन गेम्स में आज भारत के लिए ऐसा ही एक दिन रहा. कहीं मैट पर दांव पेस थे, कहीं शूटिंग रेंज पर सांसों को थाम देने वाला सन्नाटा, कहीं दौड़ती हुई सड़क पर एक एथलीट 42 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय कर रहा था, तो कहीं स्क्वॉश कोर्ट पर हर पॉइंट इतिहास के और करीब ले जा रहा था. और इन तमाम तस्वीरों के बीच भारत ने आज सिर्फ पदक नहीं जीते बल्कि अपनी खेल विरासत की कई कहानियों. तो आईची नागोया में आज भारत ने कितने मौके बनाए, कितने मकाम हासिल किए, किसने तिरंगा पोडियम तक पहुंचाया और किन मुकाबलों ने बढ़ाई कल की उम्मीद, इन सब की पूरी तस्वीर अब आपके सामने है. एशियन गेम्स 2026 में आज क्या कुछ हुआ, पूरे रोमांच को समेटे डेली हाइलाइट्स में आपका स्वागत है. मैं हूँ आनंद श्रीवास्तव. सबसे पहले नजर डालते हैं दिन की हेडलाइंस पर. कबड्डी में भारत का स्वर्णिम डबल धमाका. महिला टीम के बाद पुरुष टीम ने भी ईरान को हराकर जीता गोल्ड मेडल. 42 किलोमीटर की दूरी, 44 साल का इंतजार खत्म. सावन बरवाल ने मैराथन में सिल्वर मेडल जीतकर बनाया नया नेशनल रिकॉर्ड. शूटिंग में आया एक और पदक. आशीष चौकसी, तिलोत्तमा सेन और विदर्शा विनोद ने महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन टीम स्पर्धा में जीता सिल्वर मेडल. स्क्वॉश कोर्ट पर कामयाबी भरा दिन. जोशना चिनप्पा और विलावन सिंथिल कुमार ने जीता ब्रॉन्ज, जबकि अनाहत सिंह और अभय सिंह ने सिंगल्स फाइनल में जगह बनाकर 2 और पदक किए पक्के. शुरुआत करते हैं कबड्डी से. आज मैट पर हर रेड में रोमांच था, हर टैकल में ताकत और अंत में तिरंगा रहा सबसे ऊपर. कबड्डी के डबल गोल्ड की पूरी कहानी बता रही हैं मेघा अपनी रिपोर्ट में.
2: इंडिया कंप्लीटेड अ गोल्डन डबल इन कबड्डी विद बोथ द मेंस एंड वुमेन्स टीम्स ओवरकमिंग ईरान इन देयर रिस्पेक्टिव फाइनल्स. द वुमेन वर फर्स्ट टू स्ट्राइक इन अ टेंस गोल्ड मेडल कॉन्टेस्ट. इंडिया हेल्ड देयर नर्व टू डिफीट ईरान 37-34 एंड सक्सेसफुली डिफेंड द टाइटल दे वन एट हांगझो. इट इज इंडियाज फोर्थ Women's Kabaddi Gold since the event entered the Asian Games program in 2010. A few hours later, the men made it 2 out of 2. India defeated Iran 40.

0: पोडियम का सफर बता रहे हैं दर्पण टिकिया।
1: शनिवार को एक बार फिर शूटिंग रेंज में भारत की चांदी हुई। महिलाओं की 50 मीटर थ्री पोजिशन राइफल टीम स्पर्धा में तिलोत्तमा सेन, विदर्शा विनोद और आशी चौकसी की तिगड़ी ने रजत पदक हासिल किया। तीनों ने कुल मिलाकर 1763 पॉइंट हासिल किए और दूसरा स्थान प्राप्त किया। इसके साथ ही 20वें एशियन गेम्स में भारत शूटिंग के खेल से 11 पदक हासिल कर चुका है। 2023 में बनाए अपने खुद के एशियन गेम्स रिकॉर्ड की बराबरी करते हुए चाइनीज तिगड़ी ने स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया। इन परिणामों के आधार पर विदर्शा और तिलोत्तमा को इंडिविजुअल प्रतियोगिता के फाइनल में भी जगह मिली। हालांकि स्टैंडिंग पोजीशन में कुछ खराब शॉट्स के बाद पिछली बार इसी प्रतिस्पर्धा में एशियन गेम्स का ब्रॉन्ज मेडल लेने वाली आशी चौकसी क्वालिफाइंग राउंड से ही बाहर हो गई। फाइनल में जहां चीन की जियाउ हान ने एक नया एशियन रिकॉर्ड स्थापित किया, तो भारत की तिलोत्तमा चौथे और विदर्शा विनोद पांचवें स्थान पर रही और दोनों ही एकल वर्ग में पदक से चूक गई।
0: ट्रैक पर रफ्तार, फील्ड में फासले और भारतीय खिलाड़ियों के नाम होते गए पदक। एथलेटिक्स में भारत के शानदार दिन का पूरा हाल बता रही हैं मेघा।
2: इट वॉज अ थ्री मेडल डे फॉर इंडिया इन एथलेटिक्स विद टू सिल्वर्स एंड अ ब्रॉन्ज एंड लीडिंग द चार्ज वाज सावन बरवाल हु प्रोड्यूस्ड अ सुपर्ब रन इन द मेंस मैराथन क्लॉकिंग 2 hours 11 minutes and 37 seconds। बरवाल वन सिल्वर एंड बेटर्ड हिज ओन नेशनल रिकॉर्ड बाय 21 seconds। लेटर इन द डे तेजिंदर पाल सिंह तूर एडेड अनदर एशियन गेम medal to his collection. The two-time defending champion registered a best throw of 20.64 meters to take silver in the men's shot put. There was a bronze on the track as well. Prachi Chaudhary finished third in the women's 400 meters, clocking 53.21 seconds, while Kiran Pehel missed out on the podium. National record holder Vishal TK finished fifth in the men's 400 meters final. Vishal had impressed in qualification, clocking 45.27 seconds to win his heat, the fastest time across all three heats. In the men's triple jump, Karthik Unnikrishnan finished 6th, while Praveen Chitravel's challenge ended early after he suffered an injury on his opening attempt. In the women's 1500 meters, Paral Chaudhary came agonizingly close to a medal, finishing 4th in a personal best 4 minutes 9.46 seconds. Pooja finished 6th. India also set up several possibilities for the days ahead. Animesh Kajur qualified for the men's 200 meters final after finishing 2nd in a semi-final in 20.81 seconds. While Harita Bhadra and Unnati Ayappa progressed to the women's 200 meters final. And in the decathlon, Tejaswin Shankar ended day one on the top of the standings with 4,338 points after 5 events, keeping himself firmly in contention as the remaining 5 disciplines take place on Sunday.
0: बॉक्सिंग रिंग में हर राउंड के साथ रणनीति बदलती रहती है, लेकिन लक्ष्य वही रहता है, यानी अगले दौर में जगह। भारतीय मुक्केबाजों के लिए कैसा रहा आज का दिन, सुनते हैं शाहिद आजमी की ये रिपोर्ट।
3: एशियन गेम्स में बॉक्सिंग रिंग से भारत के लिए दोहरी खुशी की खबर है। प्रिया घंघास और कपिल पोखरिया ने शानदार जीत दर्ज करते हुए क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। महिला 60 किलोग्राम वर्ग में प्रिया घंघास का सामना दक्षिण कोरिया की ओह योन जी से हुआ था। प्रिया ने यह मुकाबला 5-0 से जीतकर अंतिम 8 में जगह पक्की कर ली है। वहीं पुरुषों के 90 किलोग्राम वर्ग में कपिल पोखरिया ने भी शानदार प्रदर्शन किया। राउंड ऑफ 16 में कपिल के सामने ईरान के सैम एस्टाकी थे। कपिल ने पूरे मुकाबले में बेहतरीन नियंत्रण दिखाया और जजों ने 5-0 के सर्वसम्मत फैसले से उन्हें विजेता घोषित किया। इस जीत के साथ कपिल ने क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। हालांकि 55 किलोग्राम वर्ग में जादू मनी सिंह को निराशा हाथ लगी। राउंड ऑफ 16 में उनका मुकाबला फिलीपींस के कार्लो पालम से हुआ। कड़े मुकाबले में जादू मनी को 0-3 से हार का सामना करना पड़ा और उनका एशियन गेम्स में अभियान समाप्त हो गया।
0: पुरुष हॉकी में भारत ने जापान को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है। भारत की ओर से अभिषेक ने 15वें मिनट में फील्ड गोल किया, जबकि कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 40वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर को गोल में तब्दील किया। ये पूल ए में भारत की लगातार चौथी जीत थी और टीम ने 12 अंक के साथ सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। एक तीर एक निशाना और पदक की ओर बढ़ता भारत। दर्पण टिकिया की रिपोर्ट में जानते हैं कि आर्चरी रेंज में आज कैसा रहा भारतीय तीरंदाजों का दिन।
1: शनिवार को एशियन गेम्स 2026 में तीरंदाजी का भी आगाज हुआ। पुरुषों की रिकर्व प्रतिस्पर्धा के क्वालिफाइंग राउंड में ही उन्होंने कुल संभव 720 में से 698 अंक हासिल करते हुए एक नया गेम्स रिकॉर्ड सेट किया। रैंकिंग राउंड में धीरज पहले पायदान तो उनके साथ ही नीरज चौहान 20वें और यश भोगे 25वें पायदान पर रहे। बतौर टीम भारत दूसरे स्थान पर रहा। महिलाओं की प्रतिस्पर्धा में भारत की टीम रैंकिंग छठी रही, तो वहीं बतौर इंडिविजुअल

0: इंडिविजुअल्स कुमकुम महोद को 10वां, कीर्ति को 20वां तो अंकिता भकट को 26वां स्थान प्राप्त हुआ। महिलाओं की टीम प्रतिस्पर्धा में पहले स्थान के लिए भारत और चीन में टाई रहा। हालांकि टाई ब्रेकर में चीन ने बाजी मारी। इंडिविजुअल स्टैंडिंग्स में चिकिता तानीपारथी पहले, पिछली बार की स्वर्ण पदक विजेता ज्योति वेनम 13वें और प्रीतिका प्रदीप 20वें स्थान पर रही। तो वही मेंस टीम तीसरे और इंडिविजुअल प्रतिस्पर्धा में साहिल जाधव 5वें, मणिरत्नम गणेश 14वें और कुशाल दलाल 16वें स्थान पर रहे। आपको याद दिला दे कि क्वालिफिकेशन या रैंकिंग राउंड से केवल ड्रॉ का फैसला होता है और असली प्रतियोगिता का अभी शुरू होना बाकी है। इसके साथ ही रिकर्व मिक्स्ड टीम प्रतियोगिता में धीरज और कुमकुम, तो वहीं कंपाउंड मिक्स्ड टीम प्रतिस्पर्धा में साहिल और चिकिता भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे।
1: एशियन गेम्स में भारतीय घुड़सवारों की आज की चुनौती पर शाहिद आजमी की रिपोर्ट।
2: घुड़सवारी से भारत के लिए अच्छी खबर है। एशियन गेम्स के पदक विजेता हृदय छेदा और जय सूद ने शानदार प्रदर्शन करते हुए व्यक्तिगत रेसेस के फाइनल में जगह बना ली है। दोनों भारतीय खिलाड़ियों ने दो क्वालिफाइंग राउंड के बाद टॉप 15 में स्थान हासिल कर लिया है। हृदय छेदा 135.059 अंकों के साथ 11वें स्थान पर है, जबकि जय सूद ने 133.559 अंक हासिल कर 13वां स्थान हासिल किया। वहीं श्रुति बोरा 129.941 अंकों के साथ 24वें स्थान पर रही। व्यक्तिगत ड्रेसेस का फाइनल कल खेला जाएगा, जहां हृदय और जय की नजर पदक पर होगी।
1: रुख करते हैं अब बैडमिंटन कोर्ट का। आज बैडमिंटन में भारतीय खिलाड़ियों के लिए मिला जुला दिन रहा। मेघा बता रही हैं अपनी रिपोर्ट में कि कौन बढ़ा आगे और किसका सफर हुआ समाप्त।
3: A day of contrasting fortunes for India in the individual badminton competition at the Asian Games. Lakshya Sen's singles campaign came to an early end against former world champion Lokheen Yu. The Indian fought back after losing the opening game, but the Singaporean prevailed 21-12, 15-21, 21-14 in a contest that lasted over an hour. It meant an individual Asian Games medal continues to elude Lakshya, although he has already won a bronze from the men's team event at these games. Ayush Shetty began with a commanding 21-7, 21-7 victory over Kazakhstan Maksud before being stretched by the experienced Chao Tin Chen. Ayush pushed the third seed to three games but went down 16-21, 21-19, 17-21 in the pre-quarterfinals. The standout performance though came from 19-year-old Unnati Huda. After surviving a three-game battle against Malaysia's Wong Ling Ching, Unnati stunned world number 6 Putri Kusuma Vardhani 21-19, 21-13 to book her place in the quarterfinals, where she faces Japan's Akane Yamaguchi. PV Sindhu also began her individual campaign with a straight games win over Chinese Taipei's Chiu Pin Qian before overcoming Japan's Tomoka Miyazaki 21-9, 21-13 in the round of 16 to book her place in the women's singles quarterfinals.
1: कैनो में भारत की चुनौती का क्या रहा नतीजा? दर्पण टिकिया की ये रिपोर्ट।
0: शनिवार को भारत के लिए कनू स्प्रिंट की अलग अलग प्रतिस्पर्धाओं में हर्षवर्धन सिंह शेखावत, पार्वती गीता और प्रसन्ना कुमार सत्यप्रकाश की जोड़ी, तो वहीं राजू रावत और नेहा देवी लचनबाम की जोड़ी शिरकत कर रही थी। इनमें से कोई भी भारत के लिए पदक नहीं दिला सका।
1: स्क्वॉश में आज भारत के लिए कहानी सिर्फ एक पदक की नहीं रही। एक तरफ अनुभव ने पोडियम छुआ तो दूसरी तरफ नई पीढ़ी ने फाइनल में जगह बनाकर इतिहास के दरवाजे पर दस्तक दी। स्क्वॉश कोर्ट का पूरा रोमांच मेघा के साथ।
3: इंडियन स्क्वॉश एंजॉयड वन ऑफ इट्स बिगेस्ट डेज एट दीज एशियन गेम्स विद टू सिंगल्स फाइनलिस्ट एंड अ मिक्स्ड डबल्स ब्रॉन्ज। द परफॉर्मेंस ऑफ द डे केम फ्रॉम 18 ईयर ओल्ड अनाहत सिंह अप अगेंस्ट होम फेवरेट एंड वर्ल्ड नंबर 6 सतोमी वतानबे। अनाहत फाउंड हरसेल्फ टू गेम्स डाउन एंड देन टू मैच points down in the third, but the Indian produced a remarkable turnaround, saving both match points and winning 4 consecutive points to take the third game. From there, the momentum completely shifted. Anahat registered a stunning comeback, winning 9-11, 11-13, 12-10, 11-6, 11-3 to reach the women's singles final. It was also the biggest win of her young career by ranking. Abhay Singh then ensured India would have representation in both singles finals. He beat Pakistan's Mohammad Irfan in straight games 11-3, 12-10, 11-6 to move within one victory of gold. Earlier, Joshna Chinnappa and B. Senthil Kumar had claimed bronze in the mixed doubles after an agonizing semi-final defeat to Hong Kong. The Indians had match points in the deciding game but eventually went down 10-11, 11-2, 10-11. For the veteran Joshna, it is a sixth Asian Games medal and there is history history on offer on Sunday, India has never won an Asian Games singles gold in squash. Both Anahat and Abhay now have the opportunity.

0: ability to change that with Olympic qualification also at stake.
1: टेबल टेनिस में आज भारतीय खिलाड़ियों को कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पॉइंट दर पॉइंट चली इस जंग में भारत का सफर कहां तक पहुंचा? बता रहे हैं शाहिद आजमी।
2: एशियन गेम्स में आज खेले गए महिला और पुरुष एकल मुकाबलों में भारतीय खिलाड़ियों को हार का सामना करना पड़ा। महिला एकल के राउंड ऑफ 16 मुकाबले में भारत की यशस्विनी घोरपड़े का सामना जापान की मीवा हरिमोटो से हुआ। यशस्विनी ने मुकाबले में अच्छा संघर्ष किया, लेकिन जापानी खिलाड़ी ने बेहतर खेल का प्रदर्शन करते हुए भारतीय खिलाड़ी को 4-1 से शिकस्त दे दी। इस हार के साथ यशस्विनी घोरपड़े का महिला एकल में अभियान समाप्त हो गया है। मीवा हरिमोटो ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। वहीं पुरुष एकल के राउंड ऑफ 32 में भारत के शाह के सामने चीन के लिन शिंदोंग की चुनौती थी। लिन शिंदोंग ने शुरुआत से ही मुकाबले पर पकड़ बनाए रखी और मानुष शाह को 4-0 से हराकर अगले दौर में जगह बना ली। इस हार के साथ मानुष शाह भी पुरुष एकल स्पर्धा से बाहर हो गए। इस तरह आज खेले गए टेबल टेनिस के दोनों मुकाबलों में भारत को निराशा हाथ लगी। हालांकि टेबल टेनिस में भारत के लिए इस एशियन गेम्स में पदक का खाता खुल चुका है। कल मिश्रित युगल में दिया चितले और मानुष शाह की भारतीय जोड़ी ने कांस्य पदक जीतकर भारत को टेबल टेनिस में इस बार का पहला और एकमात्र पदक दिलाया था।
1: फेंसिंग में मुकाबले पलक झपकते बदलते हैं, एक टच जीत और हार का फैसला कर सकता है। भारतीय फेंसर्स ने आज किस तरह पेश की अपनी चुनौती, मेघा बता रही हैं एरिना का हाल।
0: India's campaign in the team fencing events came to an end at the quarterfinal stage. The men's saber team of Karan Singh, Gisho Nidhi, Lakshya Batser and Vishal Thapar began strongly, beating Philippines 45-27 in the round of 16. That set up a much tougher quarterfinal against Asian powerhouse South Korea. India could not repeat their opening round performance and went down 25-45, ending their medal challenge. There was a similar story in the women's foil. Joyce Ashishta, Stalin Raj, Sonia Devi Vaikom, Kanu Priya Chawla and Meena Devi Narim registered a convincing 45-24 victory over Indonesia to reach the last eight, but host Japan proved too strong in the quarterfinal, bringing India's campaign to an end.
1: एशियन गेम्स के सातवें दिन यानी आज 22 गोल्ड मेडल दांव पर थे। आइए मेघा से जानते हैं मेडल टैली का लेटेस्ट अपडेट।
0: With 2 gold medals in Kabaddi, India have moved up to the 10th in the medals tally, ending the day with 30 medals, 4 gold, 12 silver and 14 bronze. China continue to lead the standings, followed by host Japan in 2nd and South Korea in 3rd.
1: कल का दिन आईची नागोया में भारत के लिए सिर्फ एक और दिन नहीं होगा, क्योंकि सुबह की पहली लहर से लेकर शाम के आखिरी ट्रैक तक भारत की उम्मीदें एक के बाद एक कई मैदानों पर उतरेंगी। सुबह करीब 4 बजे समंदर की लहरों के बीच कमाली मूर्ति और उसके कुछ देर बाद शुगर शांति बनार से सर्फिंग के विमेंस शॉर्टबोर्ड में अपनी चुनौती पेश करेंगी। यानी भारत का दिन मैदान से नहीं लहरों से शुरू होगा। इसके साथ ही एथलेटिक्स में प्रियंका गोस्वामी और मंजू रानी महिला मैराथन रेस वॉक के फाइनल में उतरेंगी। तीरंदाजी में ज्योति सुरेखा वेन्नम, प्रीतिका प्रदीप और तनी पर्थी चिकिता की कंपाउंड टीम मंगोलिया के खिलाफ उतरेगी, जबकि पुरुष टीम का सामना यूएई से होगा। और अगर ये टीमें आगे बढ़ती हैं, तो कुछ ही देर के बाद क्वार्टर फाइनल का रास्ता भी खुल सकता है। बैडमिंटन कोर्ट पर त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की महिला डबल्स जोड़ी क्वार्टर फाइनल में मलेशियाई जोड़ी का, जबकि मिक्स डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा कास्त्रो की जोड़ी चीन की चुनौती का सामना करेगी। महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में उन्नति हुडा के सामने जापान की अकाने यामागुची होंगी। शूटिंग रेंज में मनु भाकर, ईशा सिंह और राही सरनोबत 25 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में पदक पर निशाना साधने उतरेंगी। वहीं ट्रैप में कायनन चनाई, अहवर रिजवी और शपथ भारद्वाज पुरुष वर्ग में, जबकि नीरू, मनीषा कीर और आशिमा अहलावत महिला वर्ग में निशाना लगाएंगी। दोपहर तक एथलेटिक्स ट्रैक भी पूरी तरह भारतीय रंग में नजर आएगा। डिकैथलन में तेजस्विन शंकर और तौफीक नौशाद एक्शन में होंगे। 400 मीटर हर्डल्स में संतोष कुमार, तमिला रासन, यहास पलाक्षा, विद्या रामराज और अनु राघवन चुनौती पेश करेंगे। लॉन्ग जंप में नजरें रहेंगे मुरली श्रीशंकर और डेविड सोलोमोन पट्टूराज पर। और फिर आएगा दिन का एक बड़ा पदक सत्र। वेटलिफ्टिंग में हरजिंदर कौर महिलाओं की 69 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में उतरेंगी। कुराश में संगीता भारती, यश कुमार चौहान और विशाल पदक की दौड़ में होंगे। दोपहर बाद स्क्वॉश कोर्ट पर निगाहें टिकेंगी। महिला सिंगल्स में अनाहत सिंह और पुरुष सिंगल्स के फाइनल में अभय सिंह शानदार प्रदर्शन कर इतिहास बनाने की तरफ कदम बढ़ाएंगे। बॉक्सिंग रिंग में भी एक्शन होने वाला है। अंकुश 80 किलोग्राम, परवीन 65 किलोग्राम, सचिन 60 किलोग्राम और नरेंद्र 90 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग में क्वार्टर फाइनल में विनिंग पंच जड़ने की कोशिश करेंगे। और फिर शाम ढलते ढलते नागोया का एथलेटिक्स

0: स्टेडियम एक बार फिर भारतीय उम्मीदों का केंद्र होगा। एनसी सोजन और शैली सिंह लॉन्ग जंप के फाइनल में उतरेंगी। सर्वेश कुशारे और आदर्श राम हाई जंप के फाइनल में होंगे। नंदनी कोंगान 100 मीटर हर्डल्स के फाइनल में होंगी। अनिमेश कुजूर 200 मीटर में पदक जीतने का जोर लगाएंगे और 3000 मीटर स्टीपल चेज में पारुल चौधरी और अंकिता पदक के लिए दौड़ेंगी। और इसी बीच हॉकी के मैदान पर भारतीय महिला टीम के सामने होगी सिंगापुर की चुनौती। वॉलीबॉल में पुरुष टीम वियतनाम से भिड़ेगी। फेंसिंग में भवानी देवी और भारतीय महिला सेबर टीम की चुनौती जारी रहेगी। और दिन का अंत होगा एथलेटिक्स में महिला 4x100 मीटर रिले के साथ। एक दिन, इतने सारे मैदान और ढेर सारी उम्मीदें। आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। इस कार्यक्रम के एडिटर थे विशाल कुमार और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे शाहनवाज खान। आईची नागोया से भारत की उम्मीदों और उपलब्धियों का ये सफर यहीं जारी रहेगा। कल फिर मिलेंगे खेल के नए रोमांच और तिरंगे की नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी आनंद श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति। नमस्कार। एशियन गेम्स 2026 आईची नागोया।
1: మీరింతవరకు 20వ ఆసియా క్రీడలు 2026 రోజువారీ ముఖ్యాంశాల సమాహార ప్రత్యేక కార్యక్రమం విన్నారు. ఆకాశవాణి విజయవాడ కేంద్రం. సిరివెన్నెల చిత్రానికి ఎస్పి బాలసుబ్రహ్మణ్యం పాడిన పాట వింటారు.

0: ये आकाशवाणी दिल्ली है, कृपया हमारे विशेष कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है।
1: श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, यदि व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो तो अक्सर छोटे छोटे कर्मों की नैतिक योग्यता भी बड़े बड़े कर्म कर डालने में समर्थ होती है। बुद्धि तो एक तलवार के समान है। जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है उसकी काट छांट करना ही बुद्धि का काम है। इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध ना हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है।
2: The best of entertainment, information, education, अब आपके एक उंगली के इशारे पर कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।

0: पर जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
3: कोई बोले राम राम।
2: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध।

0: बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट इंफॉर्मेशन एजुकेशन अब आपके एक उंगली के इशारे पर कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
3: पर्सनल लोन ऑफर
4: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
3: फ्री ट्रिप टू दुबई
4: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
5: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
4: तो क्या करूं?
5: कॉल उठाओ फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो बैंकिंग ट्रैवल इंश्योरेंस और सबमिट, बस कुछ सेकंड्स का काम।
4: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
5: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
6: मुझे कॉलेज का टाइम याद है।
7: अरे कॉलेज की यादें छोड़िए, कितनी बातें भूल गया हूँ। तब का बैंक अकाउंट भी याद नहीं है।
6: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है।
7: कहाँ

0: रिसर्च करूंगा।
1: तो आज की चाय तेरी तरफ से।
2: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहां आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
5: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे, तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात।
6: मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार। मन की बात के सितंबर माह में फिर से एक बार आपको मिलने का अवसर मिल रहा है। मैं देश के सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मन की बात में हम देशवासियों के सकारात्मक प्रयासों को मंच देते हैं, देश की उपलब्धियों की बात करते हैं। भारत की ऐसी ही एक बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि को एक दिन बाद 10 साल होने जा रहे हैं। ये उपलब्धि है सर्जिकल स्ट्राइक की। 10 वर्ष पहले 28-29 सितंबर 2016 को भारतीय सेना ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। LOC के उस पार जाकर हमारे वीर जवानों ने जिस तरह आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की थी वो देख दुनिया हैरान थी। सर्जिकल स्ट्राइक ने डंके की चोट पर पूरी दुनिया के सामने भारत की आतंकवाद विरोधी नीति का एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया था। आतंकवादी हमलों के कारण भारत ने लंबे समय तक जो दर्द झेला था, सर्जिकल स्ट्राइक उस कष्ट के खिलाफ हमारी निर्णायक प्रतिक्रिया थी। बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। साथियों, आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। एक समय था जब भारत में सीरियल ब्लास्ट होना बहुत सामान्य बात हो गई थी। सितंबर के इस महीने में यानी 13 सितंबर 2008 को दिल्ली में हुए सीरियल ब्लास्ट में अनेक निर्दोष लोग मारे गए थे। इसके कुछ सप्ताह बाद ही मुंबई में 26/11 का इतना बड़ा हमला हुआ था। साथियों, पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी, लेकिन उस पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता था। समय बीतने का इंतजार किया जाता था। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है और हम इसके नतीजे भी देख रहे हैं। साथियों, इस साल 9/11 के आतंकी हमले को भी 25 वर्ष हुए हैं। अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जिन निर्दोष लोगों ने अपना जीवन खोया था उनमें अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा लोग भारत के थे। मुझे याद है 2014 में PM बनने के बाद जब मैं अमेरिका गया था तो न्यूयॉर्क में मैं इन निर्दोष नागरिकों को अपनी श्रद्धांजलि देने पहुंच गया था और आज फिर एक बार मैं भारत के करोड़ों नागरिकों की ओर से पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, इन दिनों देश की एक बहुत बड़ी तस्वीर तैयार हो रही है। इस तस्वीर में आप भी हैं, आपका परिवार भी है, आपके अड़ोस पड़ोस के लोग भी हैं। मैं बात कर रहा हूं भारत की जनगणना की। देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इसका पहला चरण लगभग पूरा हो चुका है। 32 करोड़ से अधिक परिवारों की जानकारी दर्ज की जा चुकी है। इन दिनों लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के दुर्गम और बर्फीले इलाकों में भी ये काम चल रहा है। वहां से कई प्रेरक अनुभव हमारे सामने आए हैं। उत्तराखंड में जनगणना की शुरुआत चमोली के माणा गांव से हुई। माणा को देश का पहला गांव कहा जाता है। माणा में सबसे पहले 83 साल की पूर्णिमा रावत जी से इसकी शुरुआत हुई। उत्तरकाशी के बगोरी गांव में होमस्टे चलाने वाले हरदेव सिंह राणा जी ने डिजिटल माध्यम से अपनी जानकारी स्वयं दर्ज की। साथियों,

जनगणना हम सबका राष्ट्रीय दायित्व है। मैंने 15 अगस्त को भी देशवासियों से आग्रह किया था कि इसके लिए अपना समय जरूर निकालें। जनगणना के लिए अपनी जानकारी स्वयं दर्ज करने की ये सुविधा बहुत आसान है। आप अपने मोबाइल से ही अपनी और अपने परिवार की जानकारी दर्ज करा सकते हैं। ये सुविधा हिंदी सहित 16 भाषाओं में उपलब्ध है। साथियों, इसके लिए आपको जनगणना के ऑनलाइन पोर्टल पर जाना होता है। ये पोर्टल है sec.census.gov.in। इस पोर्टल पर जाकर आप अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन कीजिए, अपना स्थान दर्ज कीजिए, अपने परिवार से जुड़ी जानकारी भरिए और उसे सबमिट कर दीजिए। इस पूरी प्रक्रिया में करीब 15 से 20 मिनट का समय लगता है। इसके लिए आपको कोई डॉक्यूमेंट भी अपलोड नहीं करना है। जानकारी सबमिट करने के बाद आपको एक विशेष आईडी मिलेगी। जब गणना कर्मी आपके घर आए तो आप उन्हें ये आईडी बता सकते हैं। आपके द्वारा दी गई जानकारी की पुष्टि होने के बाद वो जनगणना का हिस्सा बन जाएगी। साथियों, अब तक मोबाइल से 2,60,00,000 से ज्यादा लोग जनगणना पोर्टल पर अपनी जानकारी भर चुके हैं, स्वगणना कर चुके हैं। आपका भी इसमें थोड़ा सा समय खर्च होगा, लेकिन देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपकी सही जानकारी, आपके परिवार की सही जानकारी देश के भविष्य की सही तस्वीर तैयार करने में मदद करती है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज 27 सितंबर की ये तारीख एक विशेष कारण से और भी विशेष हो गई है। आज एक ऐसे महानुभाव की 100वीं जन्म जयंती है जिन्होंने संस्कृति, समाज और राष्ट्र के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। मैं बात कर रहा हूं विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्रद्धेय स्वर्गीय अशोक सिंहल जी की। 27 सितंबर 1926 को आज के ही दिन आगरा में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने समाज में रहकर तपस्वियों जैसा जीवन जिया। उन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन को जो दिशा दी, जो ऊर्जा दी, आज उसी का परिणाम है कि हम अयोध्या में भव्य मंदिर को साक्षात देख रहे हैं। मेरा तो बहुत बड़ा सौभाग्य रहा है, मैंने न केवल उनके उस जीवन को करीब से देखा बल्कि मुझे उनके साथ इस मिशन से जुड़ने का भी अवसर मिला। जब मैं राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान में शामिल हो रहा था तब भी मुझे बार बार अशोक जी की याद आना बहुत स्वाभाविक था। साथियों, अशोक जी के बारे में ऐसी कितनी ही बातें हैं जिनकी उतनी चर्चा नहीं होती। राम मंदिर आंदोलन के साथ ही उन्होंने सामाजिक भेदभाव और विषमता के खिलाफ भी एक बड़ी लड़ाई लड़ी थी। उनका जन्म एक बेहद समृद्ध परिवार में हुआ था। उनके पिता एक सिविल सेवा अधिकारी थे। उनके भाई बहनों में भी अधिकांश लोग बड़े बड़े पदों पर रहे। वे खुद भी IIT BHU से ग्रेजुएट थे, लेकिन इस सब के बावजूद उन्होंने समाज और संस्कृति के लिए अपना जीवन समर्पित किया। यही महान लोगों की पहचान होती है। आज मैं उनकी जन्म शताब्दी के अवसर पर उनके करोड़ों प्रशंसकों की ओर से उन्हें नमन करता हूं, मेरी तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, इस साल की शुरुआत हमने स्वाभिमान के एक महापर्व के साथ की थी। ये पर्व था सोमनाथ स्वाभिमान पर्व। आज से 1000 साल पहले 1026 में मोहम्मद गजनी ने पहली बार सोमनाथ मंदिर को विध्वंस किया था। लेकिन जो लोग सोमनाथ को तोड़कर भारत की पहचान मिटाने आए थे, आज उनका कोई वजूद भी नहीं है और सोमनाथ मंदिर पूरी भव्यता के साथ विशाल समुद्र के किनारे भारत को अमरता का आशीर्वाद दे रहा है। इसलिए हमने पूरे गर्व के साथ इस साल सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया। साथियों, ये चर्चा में आज मन की बात में फिर से क्यों कर रहा हूं, इसकी भी एक खास वजह है।
1026 ईस्वी में

इसी जीवटता के कारण सोमनाथ मंदिर का भी बार बार विध्वंस के बावजूद पुनर्निर्माण होता रहा। साथियों, मोढेरा सूर्य मंदिर पर भी बाद के कालखंड में हमले रुके नहीं। बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने एक बार फिर वास्तुकला के इस भव्य मंदिर को तोड़ दिया था। लेकिन साथियों, हम भारत के लोग सूर्य की उपासना केवल वास्तु और मंदिरों के जरिए ही नहीं करते। हमारी सूर्य उपासना, उसका एक अर्थ ये भी होता है, प्रकाश, ऊर्जा, विज्ञान और निरंतरता की प्रेरणा। इसलिए मोढेरा भी आज न केवल सूर्य मंदिर के लिए जाना जाता है, बल्कि गुजरात का ये गांव देश का प्रथम सूर्य ग्राम सोलर विलेज बन चुका है। मोढेरा आज पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलता है और उसने देश के सामने सस्टेनेबिलिटी का उदाहरण प्रस्तुत किया है। मोढेरा में पर्यटकों के लिए कई आकर्षण और सुविधाओं की शुरुआत भी हुई है। जनवरी में मकर संक्रांति के बाद वहां मोढेरा नृत्य महोत्सव का आयोजन भी होता है। इसमें भारत के सांस्कृतिक और शास्त्रीय नृत्यों की अद्भुत प्रस्तुति होती है। मैं चाहूंगा आप सब भी एक बार मोढेरा अवश्य जाएं और भारत के इस गौरवशाली विरासत के दर्शन करें। साथियों, अतीत से हमारा जुड़ाव आज भी बहुत जीवंत है। इसके पीछे उन लोगों का समर्पण और परिश्रम है जो इसे और गहरा बना रहे हैं। तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली के मनप्पारई में ऐसा ही एक अनूठा प्रयास हो रहा है। एक कॉलेज में डिपार्टमेंट ऑफ तमिल स्टडीज से जुड़े ए सेल्वा राजू जी इसे आगे बढ़ा रहे हैं। एक लेक्चर के दौरान उन्हें अपने एक स्टूडेंट से कुछ प्राचीन प्रतिमाओं की जानकारी मिली थी। इस विषय पर चर्चा के बाद उन्होंने फील्ड विजिट का प्लान बनाया। इस विजिट के दौरान उन्हें अलग अलग जगहों पर कई प्रतिमाएं मिली और प्राचीन मंदिर मिले। अतीत से जुड़ने का एक रोचक प्रयास है। इस प्रकार हम अपनी विरासत को और बेहतर तरीके से जान सकते हैं। देश के दूसरे हिस्सों में भी ऐसे प्रयास किए जा सकते हैं। ये हमें अपने इतिहास को करीब से देखने और समझने का अवसर देते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ ही दिनों बाद 2 अक्टूबर है, पूज्य बापू की जयंती का दिन। बापू ने हमें जीवन के बहुत से मंत्र दिए हैं, स्वच्छता भी उनमें से एक है। हम अक्सर अपने आसपास स्वच्छता से जुड़े अनेक प्रयासों को देखते हैं। ये प्रयास बहुत प्रेरक और उत्साह बढ़ाने वाले हैं। सोशल मीडिया पर भी ऐसी तस्वीरें, ऐसे वीडियो, ऐसी रील्स बार बार हमारा ध्यान खींचती है। हाल के दिनों में मैंने ऐसे कई प्रयास देखे हैं। कहीं मध्य प्रदेश में कुछ नौजवान नदी की सफाई का काम कर रहे हैं, उनके छोटे से प्रयास में पूरा समाज जुड़ रहा है। ऐसे ही आंध्र प्रदेश में युवा पुरानी बावड़ियों और कुओं की सफाई कर रहे हैं। इससे हमारी पुरानी धरोहरों, उसे फिर से संवारने का काम हो रहा है। मुंबई में कुछ युवा समुद्र तटों को साफ रखने की पहल कर रहे हैं। हर हफ्ते किसी न किसी बीच पर सैकड़ों युवा साथी इकट्ठा हो रहे हैं, स्वच्छता से सेवा कर रहे हैं। यहाँ दिल्ली में बच्चे और युवा लोगों को कचरा अलग अलग रखने और अपने आसपास सफाई रखने के लिए जागरूक कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में युवा छात्रों और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर पिकनिक स्थलों पर बाजारों की सफाई कर रहे हैं। साथियों, इन सभी प्रयासों में एक बात बहुत सहजता से दिखाई देती है। कहीं शुरुआत एक व्यक्ति ने की, फिर उसके साथ कुछ और लोग आ गए, कारवा बढ़ता गया। यही तो जनभागीदारी है। बापू के प्रति हमारी सबसे सुंदर श्रद्धांजलि भी स्वच्छता ही है। मेरे प्यारे देशवासियों, हम पर्यावरण की रक्षा करते हैं तो हम केवल पेड़ पौधों या जीव जंतु को ही नहीं बचाते, हम उस पूरी जीवन व्यवस्था को मजबूत करते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में हो रहे कुछ प्रयास इस भावना को बहुत सुंदर तरीके से सामने ला रहे हैं। साथियों, असम में सोनाई रूपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है।

एक समय था जब यहां हाथियों का बसेरा हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे जंगल की जमीन पर इंसानी दखल बढ़ता गया, जिसे हाथियों ने इस इलाके से दूरी बना ली। 3 साल पहले इस जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया और अब इसके अद्भुत परिणाम सामने आए हैं। हाथी यहां फिर लौट आए हैं। जिस इलाके में बरसों से उनकी चहल पहल नहीं थी, आज वहां फिर हाथियों के झुंड दिखाई दे रहे हैं। साथियों, असम में ही एक और सुंदर प्रयास हुआ है। ये प्रयास एक बहुत छोटे से जीव पिग्मी हॉक को बचाने का है। एक समय इसके अस्तित्व पर संकट मंडराने लगा था, तब केवल 6 पिग्मी हॉक के साथ एक कंजर्वेशन प्रोग्राम शुरू किया गया। उन्हें फिर जंगलों में बसाया गया, उनके रहने के लिए ग्रासलैंड्स को भी संवारा गया। आज इस प्रोग्राम की वजह से पिग्मी हॉक की संख्या 190 से ज्यादा हो चुकी है। साथियों, प्रकृति के साथ हमारा रिश्ता सिर्फ उसे सहेजने तक सीमित नहीं है। कई बार हम प्रकृति को संभालते हैं तो वही प्रकृति हमारे जीवन का सहारा बन जाती है। पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में कुछ महिलाएं इसी रिश्ते की प्रेरक मिसाल पेश कर रही हैं। जारखाली की ये महिलाएं मैंग्रोव के जंगल तैयार कर रही हैं। इनमें से ज्यादातर वो महिलाएं हैं जिनके पति की टाइगर अटैक में जान चली गई थी। पति को खोने के बाद उन्हें सुंदरबन से ही आजीविका का सहारा मिला। उनके द्वारा लगाए गए मैंग्रोव आज गांवों के लिए एक प्राकृतिक सुरक्षा कवच बन रहे हैं और इन्हें लगाकर इन महिलाओं की कमाई भी हो रही है। साथियों, हम पर्यावरण को सहेजें, प्रकृति के संतुलन का सम्मान करें और उसकी विविधता को सुरक्षित रखें। हमारा हर ऐसा प्रयास भविष्य की पीढ़ियों के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। मेरे प्यारे देशवासियों, हाल ही में देश के लाखों युवाओं ने नशे के विरुद्ध ड्रग्स के खिलाफ एक बहुत महत्वपूर्ण संकल्प लिया है। युवाओं ने खुद भी नशे से दूर रहने की प्रतिज्ञा ली है और इस संदेश को दूसरों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी ली है। ये सब हो रहा है नशा मुक्त युवा अभियान के तहत। ये अभियान 100 सप्ताह तक चलेगा। इसमें माई भारत के वॉलंटियर शामिल है, एनएसएस से जुड़े हमारे युवा भी इसका हिस्सा है, स्कूल कॉलेज और विश्वविद्यालय भी साथ आए हैं और अनेक सामाजिक और आध्यात्मिक संस्थाएं भी इससे जुड़ी हैं। पिछले कुछ दिनों में ही देश भर में हजारों संकल्प समारोह और जागरूकता के कार्यक्रम हुए हैं। साथियों, इस अभियान में एक बात मुझे विशेष रूप से अच्छी लगी, नशा मुक्ति का संदेश हमारे युवा खुद अपनी भाषा में अपने तरीके से इस संदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। मैंने मन की बात में भी युवा साथियों से आग्रह किया था कि वे अपनी क्रिएटिविटी के माध्यम से इस अभियान से जुड़े और मुझे खुशी है कि हजारों युवा इस आह्वान पर आगे आए हैं। माय भारत पर एंथेम, स्लोगन राइटिंग और नुक्कड़ नाटक जैसी अलग अलग प्रतियोगिताएं हुई है। इसी तरह सोशल मीडिया पर हमारे युवा हैशटैग नशामुक्त युवा के साथ अपना क्रिएटिव कंटेंट साझा कर रहे हैं। यानी संदेश भी युवाओं का है, माध्यम भी युवाओं का है और इसे आगे ले जाने की ऊर्जा भी युवाओं की ही है। आने वाले दिनों में इस अभियान के तहत हेल्थ चेकअप और ध्यान शिविर जैसी गतिविधियां भी होंगी। साथियों, जल्द ही हमारे अनेक पर्व और त्योहार भी आने वाले हैं। इस बार त्योहारों की खुशियों के बीच हम अपने आसपास भी नजर डालें। अगर कोई युवा किसी गलत आदत की ओर बढ़ रहा है तो उससे बात करें। अगर कोई नशे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है तो उसका साथ दें। नशा मुक्त युवा विकसित भारत के इस संकल्प को हम सब मिलकर आगे बढ़ाएं। मेरे प्यारे देशवासियों, लाल किले से मैंने इस बार स्पोर्ट्स के लिए टैलेंट हंट अभियान का ऐलान किया है। भारत लगातार बेहतरीन प्रदर्शन करता रहे, इसके लिए गांवों और कस्बों तक पहुंचकर स्पोर्टिंग टैलेंट को खोजना जरूरी है। वहीं कई ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने

इसी काम के लिए खुद को समर्पित कर दिया है। उनका एक ही पैशन होता है, टैलेंट को खोजना और उन्हें तराशना। हमारे पंजाब में यही काम राजेंद्र सिंह जी कर रहे हैं। राजेंद्र सिंह जी ऐसे एक व्यक्ति हैं जिनके नाम में सीनियर भी जुड़ा हुआ है। वे 1980 के ओलंपिक में हॉकी में गोल्ड मेडल जीतने वाली टीम का हिस्सा थे, 1982 के वर्ल्ड कप में छाए रहे थे, 2001 में भारत ने पहली बार मेंस जूनियर वर्ल्ड कप का खिताब जीता था, वहीं 2003 में देश ने सीनियर एशिया कप टाइटल पर कब्जा किया था। इन दोनों ही टूर्नामेंट में वे कोच की भूमिका में थे। अब वे राउंड ग्लास हॉकी एकेडमी के जरिए अपने पैशन को आगे ले जा रहे हैं। उनके प्रयासों से गांवों में नई हॉकी एस्ट्रोटर्फ बिछाई जा रही है। राजेंद्र जी का फोकस एकदम क्लियर है, ऐसे गांवों में बच्चों की पहचान करना जहां बेहतरीन कोचिंग की सुविधाएं कम है। ऐसे प्रयासों से कई खिलाड़ी भारत के जूनियर और सीनियर लेवल पर अपनी जगह बना रहे हैं। राजेंद्र सिंह जी के इस समर्पण की जितनी भी सराहना की जाए वो कम है। मेरे प्यारे देशवासियों, आंवला हम सभी के लिए बहुत जाना पहचाना है। ज्यादातर घरों में इससे बने अचार और मुरब्बे का प्रयोग होता है। बहुत से लोग आंवले का जूस पसंद करते हैं और सर्दियों में च्यवनप्राश हमारी दिनचर्या का अहम हिस्सा बन जाता है। हमारे बड़े बुजुर्ग तो पीढ़ियों से आंवले के गुणों के बारे में बताते आए हैं। साथियों, यही आंवला आज उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में नई संभावनाओं का माध्यम बन रहा है। प्रतापगढ़ और आंवले का रिश्ता बहुत पुराना है। पीढ़ियों से यहाँ के किसान आंवले की खेती कर रहे हैं। आंवले ने प्रतापगढ़ को एक मजबूत पहचान दी है और अब यही पुरानी पहचान यहाँ के किसानों और महिलाओं के लिए नए अवसर लेकर आ रही है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी ODOP के माध्यम से यहाँ आंवले से जुड़े स्थानीय उद्यमों को बढ़ावा मिला है। आज प्रतापगढ़ में आंवला प्रोसेसिंग से जुड़ी करीब 100 यूनिट काम कर रही है और इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाएं भी बड़ी भूमिका निभा रही है। ऐसा ही एक समूह है देवगढ़ कमासी गांव का, सावित्री फुले सेल्फ हेल्प ग्रुप। इससे जुड़ी महिलाएं आंवले से कैंडी, मुरब्बा और जूस बना रही हैं। ODOP के तहत नए बाजारों तक पहुंच बढ़ने से उनकी आय में भी बढ़ोतरी हुई है। इसी तरह एक गांव में विंध्यवासिनी सेल्फ हेल्प ग्रुप है। इस ग्रुप की महिलाएं आंवले का अचार, डाइजेस्टिव पाउडर ऐसी कई चीजें तैयार कर रही हैं। इन महिलाओं को प्रोसेसिंग के लिए मशीनरी मिली, लोन की सुविधा मिली, स्थानीय व्यापार मेले से जुड़ने का अवसर भी मिला और देखते ही देखते उनकी आय काफी बढ़ गई। साथियों, हमारे देश के हर क्षेत्र में ऐसी कोई न कोई विशेषता जरूर है। कहीं कोई खास फल है, कहीं कोई पारंपरिक कला है, तो कहीं कोई अनोखा हुनर है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इन्हीं विशेषताओं को आगे बढ़ाने का अभियान है। हमारा प्रयास यही होना चाहिए कि हमारे गांव और छोटे शहरों की ये पहचान सिर्फ स्थानीय बाजार तक सीमित ना रहे, वे देश और दूसरे हिस्सों तक पहुंचे और दुनिया के बाजारों तक भी पहुंचे। इससे वोकल फॉर लोकल अभियान को भी बल मिलता है। ये देश को आत्मनिर्भर बनाने की भी प्रेरणा देता है। आने वाले त्योहारों में भी हमें वोकल फॉर लोकल वाले मंत्र को तो कभी भी भूलना नहीं है। मेरे प्यारे देशवासियों, सितंबर का ये महीना कुपोषण से लड़ाई को समर्पित है। पोषण माह में अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े लोग और संस्थाएं इस नेक कार्य के लिए एक साथ आती हैं। कुपोषण से मुकाबला करने के लिए इस साल कई सराहनीय पहल की गई है। छत्तीसगढ़ ने हर घर मुनगा घर घर मुनगा ये अभियान शुरू किया है। इसमें लोगों को पौष्टिक मुनगा

0: यानी मोरिंगा को अपने खान पान में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। गुजरात ने भी वांगी स्पर्धा यानी मिलेट से बने व्यंजनों का कंपटीशन शुरू किया है। इस पहल के जरिए सस्ते और पौष्टिक स्थानीय खानपान को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब तक 2 लाख से ज्यादा लोग इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले चुके हैं। महाराष्ट्र भी इस दिशा में सराहनीय प्रयास कर रहा है। वहां टीचर्स, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और बच्चों के माता पिता जागरूकता अभियान से जुड़ रहे हैं। मिजोरम में भी इस साल लोगों ने साथ मिलकर पोषण वाटिकाओं की देखभाल के लिए एक अभियान शुरू किया है। यह मिजो समाज के तलो मडयाना की परंपरा के अनुरूप है। इसका अर्थ है निस्वार्थ सेवा और दूसरों की मदद में हमेशा आगे रहना। ऐसे प्रयास बेहद सराहनीय है। मुझे आंगनवाड़ी केंद्रों से जुड़े उन सभी लोगों पर भी गर्व है जो इस तरह की पहल का हिस्सा रहे हैं। ये आंगनवाड़ी केंद्र अब पोषण ट्रैकर से डिजिटली जुड़ गए हैं। करीब 9 करोड़ लाभार्थी इसमें रजिस्टर्ड हो चुके हैं। इससे बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं की बेहतर देखभाल संभव हुई है। हमें कुपोषण के खिलाफ इस लड़ाई को इसी तरह आगे लेकर जाना है। हमें हमारे समाज को कुपोषण से पूरी तरह मुक्त करना है। साथियों, हम सब ने इस महीने पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ गणेश उत्सव मनाया है। देश भर में पूरे भक्तिभाव से गणपति बप्पा का स्वागत किया गया। यह पावन अवसर पूरे वातावरण को उमंग और उल्लास से भर देता है। साथियों, विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश ज्ञान, बुद्धि और शुभ कार्यों के आरंभ के प्रतीक है। उनके प्रति अगाध श्रद्धा सिर्फ भारत में ही नहीं है। जैसे श्रीमान पंथोन थिरखानोन जी, उन्हीं की बात ले लीजिए। वे वैसे तो थाईलैंड के हैं। यहां भगवान श्री गणेश की पूजा फ्रा फिका नेत के रूप में की जाती है। और जब वे 19 वर्ष के थे तब उनके पिता ने उन्हें भगवान श्री गणेश की एक फोटो भेंट की थी। यहीं से उनमें अद्भुत भक्ति जागृत हुई। वे भगवान श्री गणेश से जुड़ी परंपराओं के अध्ययन में 4 दशक से भी अधिक समय बिता चुके हैं। उन्होंने भारत और नेपाल सहित एशिया के कई देशों की यात्रा की है। महाराष्ट्र से उनका विशेष लगाव रहा है। अष्ट विनायक परंपरा के बारे में जानने के बाद वे कई बार यहां आ चुके हैं। उनके प्रयासों से थाईलैंड के श्रद्धालुओं के बीच भी अष्ट विनायक यात्रा लोकप्रिय हो चुकी है। वर्ष 2002 में उन्होंने उत्तरी थाईलैंड के चियांग माई में गणेश हिमाल म्यूजियम की स्थापना की। आज इसमें 10,000 से अधिक गणेश प्रतिमाएं हैं। म्यूजियम में उन भक्तों के लिए अष्ट विनायक की प्रतिमाएं भी मौजूद हैं जो भारत नहीं आ सकते। यहां हर रविवार सुबह करीब 10 बजे गणेश जी की पूजा अर्चना की जाती है। गणपति से जुड़े विशेष अवसरों पर भी अनुष्ठान होते हैं। यह बताता है कि भारत की आस्था, कला और सांस्कृतिक परंपराएं दूसरे देशों में भी कैसे लोकप्रिय हो रही है। मेरी कामना है गणपति बप्पा का आशीर्वाद सभी पर हमेशा बना रहे। साथियों, मन की बात के हर एपिसोड के बाद मुझे अनेक विषयों पर आपके संदेश मिलते रहते हैं। आप इसी तरह प्रेरणा से भरी गाथाएं भेजते रहिए। जब आप अपने आसपास हो रहे ऐसे प्रयासों की सराहना करते हैं तो उनका उत्साह और बढ़ जाता है। मन की बात के माध्यम से उनके बारे में जानकर देश के दूसरे हिस्सों के लोग भी प्रेरित होते हैं। ये यात्रा इसी तरह आपके सहयोग से निरंतर आगे बढ़ती रहे। आने वाले त्योहारों को आप अपने परिजनों और दोस्तों के साथ पूरे आनंद और उल्लास से मनाएं। मैं आप सभी को एक बार फिर शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: मन की बात आकाश।

0: अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर सेना की सर्जिकल स्ट्राइक ने दुनिया के सामने भारत की आतंकरोधी नीति का एक नया उदाहरण पेश किया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश कल यानी 28 सितंबर को इस स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मनाएगा। श्री मोदी ने कहा कि दुनिया ये देखकर हैरान रह गई थी कि आतंकवाद के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक के लिए किस तरह बहादुर भारतीय सैनिकों ने नियंत्रण रेखा पार की थी।
1: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि जनगणना का पहला चरण लगभग सभी राज्यों में पूरा हो गया है और 32 करोड़ से ज्यादा परिवारों का आंकड़ा दर्ज किया जा चुका है। श्री मोदी ने लोगों से ऑनलाइन पोर्टल se.census.gov.in पर जानकारी देने की अपील की। अब तक 2,60,00,000 से ज्यादा लोगों ने मोबाइल से अपना ब्यौरा दर्ज कराया है।
1: जनगणना हम सबका राष्ट्रीय दायित्व है। मैंने 15 अगस्त को भी देशवासियों से आग्रह किया था कि इसके लिए अपना समय जरूर निकालें। जनगणना के लिए अपनी जानकारी स्वयं दर्ज करने की ये सुविधा बहुत आसान है। आप अपने मोबाइल से ही अपनी और अपने परिवार की जानकारी दर्ज करा सकते हैं। ये सुविधा हिंदी सहित 16 भाषाओं में उपलब्ध है।
0: प्रधानमंत्री ने विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष अशोक सिंघल की 100वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि श्री सिंघल ने अपना पूरा जीवन संस्कृति, समाज और राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया।
1: 27 सितंबर 1926 को आज के ही दिन आगरा में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने समाज में रहकर तपस्वियों जैसा जीवन जिया। उन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन को जो दिशा दी, आज उसी का परिणाम है कि हम अयोध्या में भव्य मंदिर को साक्षात देख रहे हैं। मेरा तो बहुत बड़ा सौभाग्य रहा है, मैंने न केवल उनके उस जीवन को करीब से देखा बल्कि मुझे उनके साथ इस मिशन से जुड़ने का भी अवसर मिला।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने इस साल की शुरुआत सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के साथ की। श्री मोदी ने बताया कि सोमनाथ मंदिर के साथ गुजरात के मोढ़ेरा में सूर्य मंदिर को भी ध्वस्त कर दिया गया था।
1: 1026 ईस्वी में जब गजनी द्वारा सोमनाथ विध्वंस हुआ था, उसी साल गुजरात के ही मोढ़ेरा में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर पर भी हमला हुआ। यानी मोढ़ेरा मंदिर विध्वंस को भी इस साल 1,000 साल हुए हैं, जबकि उस समय इस मंदिर को बने सिर्फ एक ही साल हुए थे। राजा भीमदेव प्रथम ने न केवल गजनी का मुकाबला किया था बल्कि कुछ ही समय में मोढ़ेरा सूर्य मंदिर का पुनर्निर्माण भी करवा दिया। इसी जीवटता के कारण सोमनाथ मंदिर का भी बार बार विध्वंस के बावजूद पुनर्निर्माण होता रहा।
0: श्री मोदी ने लोगों से मोढ़ेरा की गौरवशाली विरासत को देखने की अपील की। प्रधानमंत्री ने आगामी 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती की चर्चा करते हुए कहा कि स्वच्छता बापू के जीवन के मार्गदर्शक सिद्धांतों में से एक है।
1: कुछ ही दिनों बाद 2 अक्टूबर है, पूज्य बापू की जयंती का दिन। बापू ने हमें जीवन के बहुत से मंत्र दिए हैं, स्वच्छता भी उनमें से एक है। हाल के दिनों में मैंने कहीं मध्य प्रदेश में कुछ नौजवान नदी की सफाई का काम कर रहे हैं, उनके छोटे से प्रयास में पूरा समाज जुड़ रहा है। ऐसे ही आंध्र प्रदेश में युवा पुरानी बावड़ियों और कुओं की सफाई कर रहे हैं, इससे हमारी पुरानी धरोहरों उसे फिर से संवारने का काम हो रहा है, स्वच्छता से सेवा कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि देश भर में नशा मुक्त युवा अभियान हाल ही में शुरू हुआ है। उन्होंने कहा कि नशा मुक्त युवाओं और विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा।
1: युवाओं ने नशे से दूर रहने की प्रतिज्ञा ली और इस संदेश को दूसरों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी ली। ये सब हो रहा है नशा मुक्त युवा अभियान के तहत। इसमें माय भारत के वॉलंटियर शामिल हैं और जागरूकता के कार्यक्रम हुए हैं। नशा मुक्ति का संदेश, हमारे युवा खुद इस संदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। माय भारत पर एंथेम, स्लोगन राइटिंग और नुक्कड़ नाटक जैसी अलग अलग प्रतियोगिताएं हुई है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि सितंबर का महीना कुपोषण से लड़ाई को समर्पित है।
1: इस पहल के जरिए सस्ते और पौष्टिक स्थानीय खानपान को बढ़ावा दिया जा रहा है। महाराष्ट्र भी इस दिशा में सराहनीय प्रयास कर रहा है। मिजोरम में भी इस साल लोगों ने साथ मिलकर पोषण वाटिकाओं की देखभाल के लिए एक अभियान शुरू किया है। यह मिजो समाज के तलो मडयाना की

0: परंपरा के अनुरूप है। इसका अर्थ है निस्वार्थ सेवा और दूसरों की मदद में हमेशा आगे रहना। ऐसे प्रयास बेहद सराहनीय है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि इस महीने पूरी श्रद्धा और उत्साह से गणेश उत्सव मनाया गया। थाईलैंड के पंथोन थीरखानोन की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि भगवान गणेश के लिए अपार श्रद्धा विदेश में भी है। वहां भगवान गणेश की पूजा का फ्रा फिकानेत के रूप में की जाती है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के साबरमती में देश की पहली एलएनजी चालित रेलगाड़ी को रवाना किया। उन्होंने 1,500 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। गृहमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में भारतीय रेलवे में उल्लेखनीय परिवर्तन हुए हैं।
2: नरेंद्र मोदी जी आए हैं, उन्होंने अनेक प्रकार की नई सुविधाएं रेलवे में लाए, रेलवे को आधुनिक किया और अब जेएनपीटी मुंबई से वडोदरा तक पहली लॉन्ग होल डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन का सफलतापूर्वक ट्रायल पूरा हो गया है। देश में माल की आवाजाही के लिए ट्रैक्स कम है, मगर उस वक्त डबल डेकर मालगाड़ी की कल्पना सफल हो जाए तो हमारी वहन क्षमता दोगुनी हो जाएगी।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि भारत भविष्य के लिए अपनी युद्ध क्षमता विकसित कर रहा है। आज नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश को केवल तकनीक आयात पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहा है, बल्कि रक्षा तकनीक को विकसित करने का भी प्रयास कर रहा है।
3: पिछले 12 वर्षों में हमारे डिफेंस सेक्टर की न केवल क्षमता बढ़ी है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने को लेकर हमारे अप्रोच में भी बहुत बड़ा बदलाव आया है। अब हमारा ध्यान वर्तमान की जरूरतों को पूरा करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आज हम आत्मनिर्भर और फ्यूचर ओरिएंटेड डिफेंस इकोसिस्टम बनाने की दिशा में भी तेजी से अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं।
1: थल सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने कहा है कि देश की रक्षा तैयारियों के लिए उत्पादन में आत्मनिर्भरता काफी नहीं होगी, बल्कि लंबे संघर्ष की स्थिति में अपनी सैन्य क्षमता बनाए रखना और अनुकूलन क्षमता भी महत्वपूर्ण है। एक रक्षा सम्मेलन में श्री सिंह ने कहा कि युद्ध का स्वरूप, तकनीक और अवधि तेजी से बदल रही है, जिसके लिए क्षमता विकास और आत्मनिर्भरता भी तेजी से विकसित करनी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता तथा सुशासन से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए अनवरत कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आज इस विशेष श्रृंखला में जानेंगे कि कैसे सरकार का स्टार्टअप अभियान रोजगार सृजन को बढ़ावा दे रहा है और प्रमुख तकनीकी क्षेत्रों के लिए काम कर रहा है।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में स्टार्टअप इंडिया का आह्वान किया, जिसने एक जीवंत उद्यमिता संस्कृति की नींव रखी और रणनीतिक क्षेत्रों में निजी भागीदारी के लिए नए रास्ते खोले। पिछले दशक में स्टार्टअप्स की संख्या 350 से बढ़कर 2 लाख से अधिक हो गई है, जिससे 25 लाख से अधिक नौकरियां पैदा हुई हैं। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। बेंगलुरु को भी इस स्टार्टअप इकोसिस्टम से फायदा पहुंचा है। यहां 17,000 से अधिक स्टार्टअप्स का केंद्र है, जो वैश्विक बाजार के लिए उत्पादों का डिजाइन और इंजीनियरिंग कर रहा है। सेंटर फॉर सेल्युलर एंड मॉलिकुलर प्लेटफॉर्म या सी कैंप भारत का प्रमुख रिसर्च और इनोवेशन हब है और सबसे बड़े लाइफ साइंसेस इंक्यूबेशन में से एक है। इन एक्सेल के सह संस्थापक और निदेशक नीतीश कुमार जहांगीर आकाशवाणी से बात करते हुए सी कैंप और भारत सरकार से मिले सहयोग के लिए धन्यवाद देते हुए बताया है।
5: इन एक्सेल में हमारा जो विजन है इस टू मेक श्योर की जो नई नई टेक्नोलॉजीज को डेवलप करके कि आप जो पीएचसीज हैं और जो लास्ट माइल हेल्थ केयर सिस्टम है उसमें आप टेक्नोलॉजी के थ्रू कैसे हम नवजात शिशु की जो डेथ रेट है उसको रिड्यूस करें, एआई के थ्रू अदर टेक्नोलॉजी के थ्रू हम कैसे ये गैप को कम से कम करें, मेटरनल मोर्टेलिटी है जो मदर्स की डेथ रेट है और उसको हम कैसे कम करें, आईसीयू में हम और कैसे इम्प्रूवमेंट लाएं। इन एक्सेल को जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बहुत सपोर्ट मिला है।
4: स्टार्टअप्स और यूनिकॉर्न एक सहायक इकोसिस्टम बनाने में मदद कर रहे हैं, जिससे स्टार्टअप्स और यूनिकॉर्न देश अपनी डेमोग्राफिक डिविडेंड का लाभ उठा सके और एक वैश्विक इनोवेशन हब के रूप में उभर सके। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है।

0: राज्य में लगातार हो रही बारिश से आज चारधाम यात्रा स्थगित रहेगी। हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश की आशंका है। वहीं दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़ और मध्य प्रदेश में भी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। आज विश्व पर्यटन दिवस है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि अब पर्यटन रोजगार, स्थानीय अर्थव्यवस्था और विकास का एक सशक्त आधार भी बन रहा है। श्री शेखावत ने कहा कि देश की समृद्ध विरासत, संस्कृति और प्राकृतिक विविधता देश के लाखों युवाओं के लिए नए अवसरों का स्रोत बननी चाहिए। एशियाई खेलों में आज अभय सिंह और अनाहत सिंह ने स्क्वाश सिंगल्स में रजत पदक हासिल किए। दोनों खिलाड़ी अपने अपने फाइनल मुकाबले में मलेशियाई खिलाड़ी से हार गए। मुक्केबाज अंकुश पंघाल ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर पदक सुनिश्चित किया। वहीं तीरंदाजी में भारतीय पुरुष और महिला टीम ने रिकर्व और कंपाउंड दोनों स्पर्धाओं के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। पुरुषों की ऊंची कूद में श्रीशंकर मुरली और डेविड फाइनल में पहुंच गए हैं। महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ में विद्या रामराज और अनुराघवन ने फाइनल में प्रवेश किया। पुरुषों के 400 मीटर बाधा दौड़ में संतोष कुमार भी फाइनल में पहुंच गए हैं। पदक तालिका में भारत 4 स्वर्ण, 14 रजत और 14 कांस्य सहित 32 पदकों के साथ 12वें स्थान पर है। तिरुवनंतपुरम में भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला एक दिवसीय क्रिकेट मैच खेला जा रहा है। वेस्टइंडीज ने ताजा समाचार मिलने तक 4 ओवर में किसी नुकसान के 38 रन बना लिए हैं। भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल 2 दिन के राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का नई दिल्ली में उद्घाटन करेंगे। कृषि विभाग आगामी रबी मौसम के लिए प्रमुख प्राथमिकताओं और तैयारियों पर विचार विमर्श करने के लिए इस सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। सम्मेलन में केंद्र और राज्य समन्वय को मजबूत करने और कृषि उत्पादन, उत्पादकता, स्थिरता और किसानों की आय बढ़ाने के लिए कार्यनीति विकसित करने पर भी वे विचार विमर्श करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज एक दिन के आधिकारिक दौरे पर केरल पहुंचे। वे कोल्लम के अमृतापुरी में माता अमृतानंदमयी के 73वें जन्मदिन समारोह में शामिल हुए। उपराष्ट्रपति ने कहा कि माता अमृतानंदमयी का पूरा जीवन मानवता के प्रति प्रेम और सेवा के संदेश से परिपूर्ण रहा है। उपराष्ट्रपति ने मुख्यमंत्री वीडी सतीशन के साथ मिलकर नेपाल में बाढ़ग्रस्त इलाकों के लिए माता अमृतानंदमयी मठ की ओर से भारत में नेपाल के राजदूत सुरेंद्र थापा को 2 करोड़ रुपए का चेक सौंपा। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में श्री लावरोव ने कहा कि रूस भारत और ब्राजील को स्थायी सदस्य बनाए जाने का समर्थन करता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सर्जिकल स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर ने विश्व को भारत की आतंकवाद रोधी नीति का एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि आतंकवादी हमलों का वह मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने नशा मुक्त अभियान के लिए लोगों से मिलकर काम करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने लोगों से जनगणना में शामिल होने और स्वगणना सुविधा का उपयोग करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि जनगणना का पहला चरण लगभग पूरा हो चुका है। गृहमंत्री अमित शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गुजरात के साबरमती में देश की पहली LNG चालित रेलगाड़ी को रवाना किया। उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट और एशियाई खेलों में अभय सिंह और अनाहत सिंह ने स्क्वाश सिंगल्स में रजत पदक हासिल किए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी विजयवाड़ा केंद्रम।

0: ఆకాశవాణి విజయవాడ కేంద్రం. సమయం సాయంత్రం 6 గంటలు కావస్తుంది. మరికొద్ది క్షణాల్లో హిందీలోను అనంతరం ఆంగ్లంలోను వార్తా ప్రసారం ఆకాశవాణి ఢిల్లీ కేంద్రం నుంచి రిలే.
1: నమస్కార్, ఆకాశవాణి సమాచార్ కి సాథ్ మై జయా భారతి. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर सेना की सर्जिकल स्ट्राइक ने दुनिया के सामने भारत की आतंकरोधी नीति का एक नया उदाहरण पेश किया. आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश कल यानी 28 सितंबर को इस स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मनाएगा. श्री मोदी ने कहा कि अब भारत आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर चल रहा है और इसका नतीजा सामने है. प्रधानमंत्री ने कहा कि जनगणना का पहला चरण लगभग सभी राज्यों में पूरा हो गया है और 32 करोड़ से ज्यादा परिवारों का आंकड़ा दर्ज किया जा चुका है. श्री मोदी ने लोगों से ऑनलाइन पोर्टल se.census.gov.in पर जानकारी देने की अपील की. अब तक 2,60,00,000 से ज्यादा लोगों ने मोबाइल ऐप से अपना ब्यौरा दर्ज कराया है.
2: जनगणना हम सबका राष्ट्रीय दायित्व है. मैंने 15 अगस्त को भी देशवासियों से आग्रह किया था कि इसके लिए अपना समय जरूर निकालें. जनगणना के लिए अपनी जानकारी स्वयं दर्ज करने की ये सुविधा बहुत आसान है. आप अपने मोबाइल से ही अपनी और अपने परिवार की जानकारी दर्ज करा सकते हैं. ये सुविधा हिंदी सहित 16 भाषाओं में उपलब्ध है.
1: गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के साबरमती में 1,500 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया. उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ साबरमती स्टेशन से देश की पहली द्रवीकृत प्राकृतिक गैस LNG से चालित रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना भी किया. इस रेलगाड़ी में डीजल और LNG दोनों ईंधन प्रणाली का इस्तेमाल किया गया है. श्री शाह ने बताया कि रेलवे में वार्षिक डीजल की खपत 293 करोड़ लीटर से घटकर 108 करोड़ लीटर रह गई है और इसे पूरी तरह समाप्त करने के लिए प्रयास जारी हैं. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि भारत किसी अन्य देश की भूमि पर कब्जा करने की इच्छा नहीं रखता है, लेकिन खतरे की स्थिति में अपनी सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता की रक्षा करेगा. नई दिल्ली में रक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक स्थिरता और शांति का पक्षधर है, लेकिन अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता से कोई समझौता नहीं करेगा. श्री सिंह ने कहा कि भारत के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले किसी भी देश के साथ बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं है. विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि नैनो मेडिसिन सटीक और व्यक्तिगत स्वास्थ्य सेवा की अगली पीढ़ी को आगे बढ़ाएगी. नई दिल्ली में आज विश्व नैनो मेडिसिन कांग्रेस 2026 के उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि जैव प्रौद्योगिकी विभाग नैनो मेडिसिन के क्षेत्र में 210 अनुसंधान और विकास परियोजनाओं को 174 करोड़ रूपये की वित्तीय सहायता दे रहा है. पशुपालन और डेयरी विभाग नई दिल्ली में कल पशुधन बीमा पोर्टल लॉन्च करेगा. मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह इस पोर्टल का शुभारंभ करेंगे. मंत्रालय ने कहा कि यह पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एकीकृत डिजिटल मंच प्रदान

0: अवधौ तेभ्यः निरपराध नागरिकेभ्यः स्वकीयं श्रद्धाञ्जलिं समर्पितवान् इति सः अस्मरत्। प्रधानमन्त्री कोटिशः भारतीय नागरिकाणां पक्षतः शोक संतप्त परिवारेभ्यः पुनरपि एकदा संवेदनां प्राकटयत्। अपरं च जनगणना प्रक्रियाम् अधिकृत्य श्रीमोदी अवोचत् यत् अस्य राष्ट्रियाभियानस्य प्रथमः चरणः देशस्य सर्वेषु अपि राज्येषु केन्द्रशासित प्रदेशेषु च प्रायः सम्पन्नः अभवत्, यत्राधुना यावत् द्वात्रिंशत् कोट्यधिक परिवाराणां विवरणं समालेखितम्। सम्प्रति लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखण्ड राज्यानां दुर्गमेषु हिमाच्छादितेषु क्षेत्रेषु अपि कार्यमिदम् अविरतं प्रचलति। एतेभ्यः सीमान्तक्षेत्रेभ्यः अनेके प्रेरकाः अनुभवाः प्राप्ताः इति उल्लेखयन् असौ अवोचत् यत् उत्तराखण्डराज्ये देशस्य प्रथमग्रामरूपेण प्रसिद्धात् चमोलीमण्डलस्य माणाग्रामात् मतगणनाकार्यस्य शुभोत्कर्षः अभवत्।
1: जनगणना हम सबका राष्ट्रीय दायित्व है। मैंने 15 अगस्त को भी देशवासियों से आग्रह किया था कि इसके लिए अपना समय जरूर निकालें। जनगणना के लिए अपनी जानकारी स्वयं दर्ज करने की ये सुविधा बहुत आसान है। आप अपने मोबाइल से ही अपनी और अपने परिवार की जानकारी दर्ज करा सकते हैं। ये सुविधा हिंदी सहित 16 भाषाओं में उपलब्ध है।
0: अद्य विश्व हिन्दू परिषदः भूतपूर्वस्य अन्ताराष्ट्रिय कार्याध्यक्षस्य श्रद्धेयस्य स्वर्गीय अशोक सिंघलस्य जन्मशताब्दी जयन्ती वर्तते इति प्रधानमन्त्रिणा प्रोक्तम्। सः अशोक सिंघलम् एतादृशं महान्तं व्यक्तित्वम् अभिहितवान् येन स्वकीयम् अखिलमपि जीवनं संस्कृतेः, समाजस्य, राष्ट्रस्य च सेवायै समर्पितम्। प्रधानमन्त्रिणा अक्टूबर मासस्य द्वितीये दिनांके आयोज्यमानायाः महात्मा गान्धी जयन्त्याः सन्दर्भे अभिहितं यत् बापू इत्यस्य जीवनमूल्येषु स्वच्छता अभियानस्य स्थानम् अनन्यमस्ति। सः न्यगादीत् यत् व्यक्तिगतस्तरात् आरब्धाः प्रयासाः अनन्तरं लोकसहभागेन व्यापकरूपं धारयन्ति। स्वच्छतैव राष्ट्रस्य पक्षतः महात्मा गान्धिने दीयमानः सर्वोत्कृष्टः श्रद्धाञ्जलिः वर्तते इति मोदिना सबलम् उक्तम्।
1: कुछ ही दिनों बाद 2 अक्टूबर है, पूज्य बापू की जयंती का दिन। बापू ने हमें जीवन के बहुत से मंत्र दिए हैं, स्वच्छता भी उनमें से एक है। हाल के दिनों में मैंने कहीं मध्य प्रदेश में कुछ नौजवान नदी की सफाई का काम कर रहे हैं, उनके छोटे से प्रयास में पूरा समाज जुट रहा है। ऐसे ही आंध्र प्रदेश में युवा पुरानी बावड़ियों और कुओं की सफाई कर रहे हैं, इससे हमारी पुरानी धरोहरों उसे फिर से संवारने का काम हो रहा है, स्वच्छता से सेवा कर रहे हैं।
0: मादक द्रव्य व्यसन मुक्त्यै संचालितस्य मादक मुक्त युवा अभियानस्य प्रसंगे प्रधानमन्त्रिणा प्रतिपादितं यत् लक्षाधिकैः युवकैः दुर्व्यसनात् दूरस्थाने सम्भूय अन्यान् जागरयितुं महती प्रतिज्ञा गृहीता। शतसप्ताहव्यापि अस्मिन् राष्ट्रिय यज्ञे युवकाः स्वकीयाम् अभिव्यक्ति कलां प्रयुञ्जीरन् इति मोदिना आह्वानं विहितम्। क्रीडा संवर्धनमधिकृत्य तेन प्रोक्तं यत् दर्ग रक्तदुर्गस्य प्राचीरात् उद्घोषितायाः क्रीडा प्रतिभा अन्वेषण योजनायाः मूल लक्ष्यं सुदूर ग्रामेषु निगूढ सामर्थ्यस्य अन्वेषणम् अस्ति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः अद्य साबरमती स्थाने 15,00,000,00,000 रूप्यकाणां रेल परियोजनानां लोकार्पणं शिलान्यासं च अकरोत्। तेन गुजरातस्य मुख्यमन्त्रिणा सह देशस्य प्रथमा LNG चालिता रेलसेवा च समारब्धा। एषा द्विइन्धनप्रणाली 40% यावत् डीजल उपभोगं न्यूनीकरिष्यति। भारतवर्षं कस्यापि राष्ट्रस्य भूखण्डम् आक्रमयितुं नैव वाञ्छति, परञ्च राष्ट्रियसुरक्षायाः स्वायत्ततायाश्च उल्लङ्घने सति प्रतिघातं निश्चप्रचं करिष्यति इति नवदिल्ल्यां रक्षा सम्मेलने भाषमाणः

0: एक बालाकोट एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर को भारत की आतंकवाद विरोधी कार्रवाई का साहसिक उदाहरण बताया। कहा ये आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दर्शाते हैं। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने जनगणना 2027 की प्रगति का उल्लेख करते हुए कहा, 32 करोड़ से अधिक परिवारों का विवरण दर्ज किया गया है। उन्होंने महात्मा गांधी की जयंती से पहले स्वच्छता अभियानों में जनता की अधिक से अधिक भागीदारी का भी आह्वान किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत रणनीतिक स्वायत्तता से समझौते किए बिना वैश्विक स्थिरता का समर्थक। गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के साबरमती से देश की पहली LNG चालित रेल को झंडी दिखाकर रवाना किया। इसे स्वच्छ ऊर्जा के लिए रेलवे का महत्वपूर्ण कदम बताया। एशियाई खेलों में भारत ने वुमेन्स लॉन्ग जंप, मेंस हाई जंप और स्क्वॉश सिंगल्स स्पर्धाओं में रजत पदक जीते। डेकाथनॉल, वुमेन्स स्टेपल चेज और 200 मीटर दौड़ में कांस्य पदक हासिल किए। और भारत ने शतरंज ओलंपियाड में नोना ग्रैम्पेडाश्विली ट्रॉफी बरकरार रखी। ओपन वर्ग में रजत और महिला वर्ग में कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर को भारत की आतंकवाद विरोधी कार्रवाई का साहसिक उदाहरण बताया है। सेना की ये कार्रवाई आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दर्शाते हैं। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश कल यानी 28 सितंबर को इस स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मनाएगा। श्री मोदी ने कहा कि दुनिया ये देखकर हैरान रह गई थी कि आतंकवाद के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक के लिए किस तरह बहादुर भारतीय सैनिकों ने नियंत्रण रेखा पार की थी।
1: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि जनगणना का पहला चरण लगभग सभी राज्यों में पूरा हो गया है और 32 करोड़ से ज्यादा परिवारों का आंकड़ा दर्ज किया जा चुका है। श्री मोदी ने लोगों से ऑनलाइन पोर्टल se.census.gov.in पर जानकारी देने की अपील की। अब तक 2,60,00,000 से ज्यादा लोगों ने मोबाइल से अपना ब्यौरा दर्ज कराया है।
1: जनगणना हम सबका राष्ट्रीय दायित्व है। मैंने 15 अगस्त को भी देशवासियों से आग्रह किया था कि इसके लिए अपना समय जरूर निकालें। जनगणना के लिए अपनी जानकारी स्वयं दर्ज करने की ये सुविधा बहुत आसान है। आप अपने मोबाइल से ही अपनी और अपने परिवार की जानकारी दर्ज करा सकते हैं। ये सुविधा हिंदी सहित 16 भाषाओं में उपलब्ध है।
0: श्री मोदी ने लोगों से मिढोरा की गौरवशाली विरासत को देखने की भी अपील की। प्रधानमंत्री ने आगामी 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती से पहले स्वच्छता अभियानों में जनता की अधिक से अधिक भागीदारी का भी आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वच्छता बापू के जीवन के मार्गदर्शक सिद्धांतों में से एक है।
1: कुछ ही दिनों बाद 2 अक्टूबर है, पूज्य बापू की जयंती का दिन। बापू ने हमें जीवन के बहुत से मंत्र दिए हैं, स्वच्छता भी उनमें से एक है। हाल के दिनों में मैंने कहीं मध्य प्रदेश में कुछ नौजवान नदी की सफाई का काम कर रहे हैं, उनके छोटे से प्रयास में पूरा समाज जुड़ रहा है। ऐसे ही आंध्र प्रदेश में युवा पुरानी बावड़ियों और कुओं की सफाई कर रहे हैं। इससे हमारी पुरानी धरोहरों उसे फिर से संवारने का काम हो रहा है, स्वच्छता से सेवा कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने एक जिला एक उत्पाद के संबंध में कहा कि आंवला उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में नई संभावनाओं को जन्म दे रहा है। यहां के किसान पीढ़ियों से आंवले की खेती करते आ रहे हैं। विंध्यवासिनी स्व सहायता समूह की महिलाएं आंवले से अचार और पाचक चूर्ण बना रही हैं। इन महिलाओं को प्रसंस्करण और ऋण की सुविधा मिली है। श्री मोदी ने त्योहारों के दौरान वोकल फॉर लोकल मंत्र को याद रखने की अपील की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत किसी अन्य देश की भूमि पर कब्जा करने की इच्छा नहीं रखता है, लेकिन खतरे की स्थिति में अपनी सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता की रक्षा करेगा। नई दिल्ली में आज एक रक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने ये बात कही।
2: भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत अपनी सुरक्षा के साथ किसी भी सूरत में समझौता नहीं करे।

0: भारत डायलॉग में विश्वास रखता है, लेकिन यदि कोई देश भारत के खिलाफ आतंकवाद को हवा देगा तो डायलॉग की गुंजाइश वहीं खत्म हो जाती है। जो देश टेररिज्म को अपनी नीति का साधन बनाते हैं, आतंकियों को पनाह और समर्थन देते हैं, उन्हें कड़ा संदेश देना होगा कि आतंकवाद किसी के लिए स्ट्रेटेजिक एसेट किसी भी सूरत में नहीं हो सकता।
1: राष्ट्रीय सुरक्षा के एक प्रमुख स्तंभ के रूप में राष्ट्रीय एकता पर बल देते हुए श्री सिंह ने कहा कि देश की सुरक्षा केवल सशस्त्र बलों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि प्रत्येक नागरिक की सामूहिक जिम्मेदारी है। रक्षा मंत्री ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत की महत्वपूर्ण प्रगति का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत का रक्षा निर्यात 2013-14 में मात्र 686 करोड़ रुपए से बढ़कर 2025-26 में रिकॉर्ड 38,424 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। श्री सिंह ने कहा कि भारत को उभरती प्रौद्योगिकियों के साथ साथ साइबर, अंतरिक्ष, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना युद्ध जैसे क्षेत्रों से परे भविष्य के लिए तैयार क्षमताओं को विकसित करने की आवश्यकता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की, आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के साबरमती में 1,500 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ साबरमती स्टेशन से देश की पहली द्रवीकृत प्राकृतिक गैस LNG से चालित रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना भी किया। इस रेलगाड़ी में डीजल और LNG दोनों ईंधन प्रणाली का इस्तेमाल किया गया है। गृह मंत्री ने रेलवे के इस कदम को स्वच्छ ऊर्जा के लिए महत्वपूर्ण बताया। श्री शाह ने कहा कि रेलवे में वार्षिक डीजल की खपत 293 करोड़ लीटर से घटकर 108 करोड़ लीटर रह गई है और इसे पूरी तरह समाप्त करने के लिए प्रयास जारी हैं।
3: विद्युतीकरण 2010-11 में 75 किलोमीटर होता था और 23-24 में 7,188 किलोमीटर विद्युतीकरण, 75 से 7,000 किलोमीटर की छलांग, 99.6% रेलवे का विद्युतीकरण हो गया है, 0.3% जो बाकी है वो भी हम पूरा कर लेंगे।
1: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अध्यक्ष अशोक सिंघल ने अपना पूरा जीवन हिंदुत्व, राष्ट्र और समाज सेवा के लिए समर्पित कर दिया था। दिवंगत अशोक सिंघल के जन्म शताब्दी समारोह के उद्घाटन कार्यक्रम में श्री शाह ने कहा कि उनका जीवन हमेशा युवाओं को जागरूक करता रहेगा।
3: अशोक जी का जीवन कई सारे किशोरों के लिए, युवाओं के लिए एक इंस्टीट्यूशन है। उनके जीवन का सत्व, उनका तप, उनकी सादगी और उनका पुरुषार्थ हर युवा के लिए अनुकरण करने योग्य गुण है और स्वाभाविक रूप से उनका स्मरण हमेशा युवाओं को जागरूक करता रहेगा।
1: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा कि तकनीक किसी चिकित्सक के मानवीय स्पर्श और नैतिक जिम्मेदारी का स्थान नहीं ले सकती। श्री राधाकृष्णन आज तिरुवनंतपुरम में SUT अकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज के दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे।
4: As we embrace technology, we must remember that one fundamental truth. Technology can assist a doctor, but it cannot replace the human touch of a doctor. A machine can analyze, a robot can assist, but there is no comparison that human touch by a doctor to the patient. An algorithm can identify patterns, but patient still needs a doctor. Who can listen, understand, reassure and take the responsibility.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के क्षेत्र में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और लगातार जारी रहने वाले समर्पण से संभव हुआ है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टि

0: दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से यह समर्पण लोगों की जिंदगी बदल रहा है। आज अपनी विशेष श्रृंखला में हम बात कर रहे हैं नमो भारत रैपिड रेल की कि कैसे इस संकल्प को वास्तविकता में बदला गया।
1: नमो भारत भारत की पहली क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है। यह 82.15 किलोमीटर लंबा सेमी हाई स्पीड कॉरिडोर है। 30,274 करोड़ रुपए की लागत से तैयार इस कॉरिडोर पर ट्रेन को 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाया जा सकता है। यह सेवा इस साल फरवरी से शुरू हुई और इसके कारण दिल्ली से मेरठ के सफर का समय घटकर 1 घंटे से भी कम हो गया है। रैपिड रेल के उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नमो भारत ट्रेन आधुनिकता, तेजी और शानदार रफ्तार को दर्शाती है।
2: नमो भारत ट्रेन में आधुनिकता भी है, गति भी है, अद्भुत स्पीड भी है। ये नमो भारत ट्रेन नए भारत के नए सफर और नए संकल्पों को परिभाषित कर रही है।
1: नमो भारत में यात्रा करने वाले एक यात्री ने बताया,
3: जो लोग पहले गाड़ी से जाते थे या फिर कार बस से जाते थे, उनको ना कार में जाने की झंझट है कि ट्रैफिक जाम आपको पीक टाइम में मिलता ही मिलता है। किसी भी एम्प्लॉय से आप पूछोगे कि जो काम करता है बाहर, आई डोंट थिंक कि वो डिसएग्री करेगा इस चीज से कि नमो भारत रैपिड रेल की चेंजर है, एक डेवलपमेंट है मेरठ और यूपी के इतिहास।
1: नमो भारत का अलग अलग परिवहन साधनों के साथ सहज जुड़ाव भारत में तेज इंटरसिटी यात्रा को सुनिश्चित करता है और एकीकृत शहरी तथा क्षेत्रीय परिवहन के लिए एक मिसाल कायम करता है। यह परियोजना प्रधानमंत्री के उस विजन को और गति देती है जिसमें शहरी परिवहन को बदलने और नागरिकों के लिए सुगम, कुशल, आधुनिक और टिकाऊ सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित करने की बात कही गई है। भानु प्रताप के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। अब रुख खेल खबरों का। एशियाई खेलों के हलचल के साथ हैं सिद्धार्थ सिंह।
4: एशियाई खेलों के आज 8वें दिन भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 रजत और 3 कांस्य सहित कुल 7 पदक जीते। सर्वेश कुशारे ने पुरुष हाई जंप में रजत पदक हासिल किया। उन्होंने 2.25 मीटर की सर्वश्रेष्ठ कूद लगाई। महिला लॉन्ग जंप में एनसी सोजन ने 6.53 मीटर की छलांग लगाकर दूसरा स्थान हासिल किया। स्क्वाश में अभय सिंह और अनाहत सिंह को रजत पदक मिला। पारुल चौधरी ने महिला 3000 मीटर स्टीपल चेज में कांस्य पदक अपने नाम किया। तेजस्विन ने डेकोथलॉन में 7,934 अंकों के साथ कांस्य पदक जीता। हरिता भद्रा ने महिला 200 मीटर में तीसरा स्थान हासिल कर कांस्य पदक देश के नाम किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को बधाई दी है। पदक तालिका में भारत 4 स्वर्ण, 16 रजत और 17 कांस्य सहित 37 पदक लेकर 12वें स्थान पर है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एशियाई खेलों में पदक जीतने वाले सभी खिलाड़ियों को बधाई दी है। उधर भारत ने उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित शतरंज ओलंपियाड में नौना ग्रैमपेंडा शिवली ट्रॉफी बरकरार रखी है। भारतीय टीम ने ओपन वर्ग में रजत और महिला वर्ग में कांस्य पदक जीतकर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। पुरुष टीम ने हंगरी के साथ ड्रॉ खेला और टाई ब्रेक के आधार पर रजत पदक जीता। महिला टीम ने जॉर्जिया के साथ ड्रॉ खेलकर कांस्य पदक देश को दिलाया। तिरुवनंतपुरम में 3 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच की श्रृंखला के पहले मैच में वेस्टइंडीज के खिलाफ जीत के लिए 296 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 34 ओवर में 2 विकेट पर 225 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर को भारत की आतंकवाद विरोधी कार्रवाई का साहसिक उदाहरण बताया। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने जनगणना 2027 की प्रगति का उल्लेख करते हुए कहा, 32 करोड़ से अधिक परिवारों का विवरण दर्ज किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत रणनीतिक स्वायत्तता से समझौता किए बिना वैश्विक स्थिरता का समर्थक। और भारत ने शतरंज ओलंपियाड में नोना ग्रैमपेंडा शिवली ट्रॉफी बरकरार रखी। ओपन वर्ग में रजत और महिला वर्ग में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: Good evening. This is Akashwani and I am Nishit Kumar with the news at 9. The headlines.

यह आकाशवाणी है। आज के रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में हम आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं एस सुप्रदीप का बांसुरी वादन। एस सुप्रदीप एक प्रतिभाशाली एवं सिद्धहस्त बांसुरी वादक हैं और संगीत की एक प्रतिष्ठित परंपरा से जुड़े परिवार से आते हैं। आप सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक एस ए शशिधर के सुपुत्र एवं शिष्य हैं। आपने अपने पिता के मार्गदर्शन में शास्त्रीय संगीत की बारीकियों और समृद्ध संगीत परंपरा को आत्मसात किया है। सुप्रदीप ने छोटी उम्र से ही संगीत के प्रति अपनी निष्ठा और समर्पण का परिचय दिया है। आपने राज्य स्तरीय जूनियर और सीनियर संगीत परीक्षाएं सफलतापूर्वक उत्तीर्ण की हैं और दोनों में रैंक प्राप्त की है। आपकी संगीत प्रतिभा और संभावनाओं को सेंट

0: सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्सेज एंड ट्रेनिंग तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई प्रतिष्ठित छात्रवृत्तियों के माध्यम से भी मान्यता मिली है। आप आकाशवाणी बेंगलुरु के ए ग्रेड कलाकार हैं। आपकी कला प्रस्तुति के माध्यम से आपने विविध श्रोताओं तक शास्त्रीय संगीत पहुंचाने तथा उसके प्रचार प्रसार में योगदान दिया है। आपकी कला यात्रा भारत तक ही सीमित नहीं है, आपने अपने पिता के साथ विदेशों की संगीत यात्राओं में भाग लिया है, जहां आपने बांसुरी की युगल प्रस्तुति दी। प्रसारण और डिजिटल माध्यमों में भी सुप्रदीप ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है।
1: दिस इज आकाशवाणी इन टुनाइट्स ब्रॉडकास्ट ऑफ रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। वी ब्रिंग यू फ्लूट रिसाइटल बाय यस सुप्रदीप। यस सुप्रदीप इज अ टैलेंटेड एंड एकम्प्लिश्ड फ्लूटिस्ट who belongs to a distinguished family of musicians. He is the son and disciple of renowned flautist S. A. Shashidhar and has imbibed the nuances of classical music through the rich tradition and guidance of his father. Supradeep has demonstrated his dedication and commitment to music from an early age. He successfully completed the state junior and senior music examinations, securing ranks in both. His musical talent and promise have been recognized through prestigious scholarships from the Center for Cultural Resources and Training and the Ministry of Human Resource Development. He is an A-grade artist of Akashwani Bengaluru. Through his musical performances, he has reached diverse audiences and contributed to the promotion and propagation of Indian classical music. His artistic journey extends beyond the Indian stage. Supradeep has accompanied his father on musical tours to the abroad, where they presented flute duet concerts. Supradeep has also made his presence felt in the broadcast and digital space.
0: आज की इस प्रस्तुति में आपके साथ संगत कर रहे हैं वायलिन पर जी वेंकटेश जोशेर, मृदंगम पर के वी रविशंकर शर्मा और मोरसिंग पर लिखित के एम।
1: In tonight's performance, he is accompanied on violin by G. Venkatesh Joshier, on mridangam by K. V. Ravishankar Sharma, and on morsing, Likhit K. M.
0: S. Supradeep apne basuri vadan ka aarambh Vallabha Nayakasya se kar rahe hain. Yeh Muthuswami Dikshitar ki sundar rachna hai, jo raag beghade aur rupak taal mein nibaddh hai.
1: Yes, Supradeep begins his flute recital with Vallabha Nayakasya, a beautiful composition of Muthuswami Dikshitar, set in Raga Begade and Rupaka Tala.

0: अगली प्रस्तुति है मरिवेरे दिक्केवरु। यह पठनम सुब्रमण्य अय्यर की लोकप्रिय रचना है, जिसे राग लतांगी और खंड चापुताल में प्रस्तुत किया जा रहा है।
1: द नेक्स्ट प्रेजेंटेशन इज मरिवेरे दिक्केवरु, अ पॉपुलर कॉम्पोजिशन ऑफ पठनम सुब्रमण्य अय्यर, सेट इन राग लतांगी एंड खंड चापुताला।

रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में आप सुन रहे हैं एस सुप्रदीप का बांसुरी वादन। आपके साथ संगत कर रहे हैं वायलिन पर जी वेंकटेश जोशियर, मृदंगम पर केवी रविशंकर शर्मा और मोरसिंग पर लिखित के एम।

0: अपनी प्रस्तुति को आगे बढ़ाते हुए एस सुप्रदीप अब प्रस्तुत कर रहे हैं रा रा राजीव लोचना। यह मैसूर वासुदेवाचार्य की मधुर रचना है जो राग मोहनम और आदि ताल में निबद्ध है।
1: इन द रविवासरिया अखिल भारतीय संगीत सभा यू आर लिसनिंग टू फ्लूट रिसाइटल बाय यस सुप्रदीप। ही इज एकम्पनीड ऑन वायलिन बाय जी वेंकटेश जोशियर, ऑन मृदंगम केवी रविशंकर शर्मा एंड ऑन मोर सिंह लिखित केएम। कंटिन्यूइंग हिज परफॉर्मेंस यस सुप्रदीप नाउ प्रेजेंट्स रा रा राजीव लोचना, अ कॉम्पोजिशन ऑफ मैसूरु वासुदेवाचार्य, set in Ragamohana and Aditala.

0: अभी आपने तनी आवर्तनम सुना, जिसे मृदंगम पर केवी रविशंकर शर्मा और मोर सिंह पर लिखित केएम ने प्रस्तुत किया।
1: दैट वॉज तनी आवर्तनम प्रेजेंटेड ऑन मृदंगम बाय केवी रविशंकर शर्मा एंड ऑन मोर सिंह बाय लिखित केएम।
0: एस सुप्रदीप अपने बांसुरी वादन का समापन कन्नड़ भक्ति रचना तंबूरी मीठी दवा से कर रहे हैं। यह महान संत कवि पुरंदर दास की रचना है और राग सिंधु भैरवी तथा आदि ताल में निबद्ध है।
1: यस सुप्रदीप कंक्लूड्स हिज फ्लूट रिसाइटल विद अ टाइमलेस कन्नड़ा डिवोशनल कॉम्पोजिशन तंबूरी मीठी दवा कंपोज्ड बाय द ग्रेट सेंट पोएट पुरंदर दास सेट इन राग सिंधु भैरवी एंड आदि ताला।

0: रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में आप सुन रहे थे एस सुप्रदीप का बांसुरी वादन। आपके साथ संगत कर रहे थे वायलिन पर जी वेंकटेश जोशेर, मृदंगम पर केवी रविशंकर शर्मा और मोरसिंग पर लिखित केएम। यह कार्यक्रम आकाशवाणी बेंगलुरु का योगदान था, जिसे आकाशवाणी दिल्ली के स्टूडियो से आपके लिए प्रस्तुत किया गया।
1: इंदिरा रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा, यू आर लिसनिंग टू फ्लूट रिसाइटल बाय यस सुप्रदीप। ही वाज एकॉम्पनीड ऑन वायलिन बाय जी वेंकटेश जोशियर, मृदंगम बाय केवी रविशंकर शर्मा एंड ऑन मोरसिंग लिखित केएम। This program is a contribution of Akashvani Bengaluru, brought to you from the studios of Akashvani Delhi.
2: Namaskar, Akashvani Samachar ke saath main Ashutosh Mishra. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर को भारत की आतंकवादी विरोधी कार्रवाई का साहसिक उदाहरण बताया है। सेना की यह कार्रवाई आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दर्शाती है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश कल यानी 28 सितंबर को इस स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मनाएगा। श्री मोदी ने कहा कि दुनिया यह देखकर हैरान रह गई थी कि आतंकवाद के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक के लिए किस तरह बहादुर भारतीय सैनिकों ने नियंत्रण रेखा पार की थी।
3: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि जनगणना का पहला चरण लगभग सभी राज्यों में पूरा हो गया है और 32 करोड़ से ज्यादा परिवारों का आंकड़ा दर्ज किया जा चुका है। श्री मोदी ने लोगों से ऑनलाइन पोर्टल se.census.gov.in पर जानकारी देने की अपील की। अब तक 2,60,00,000 से ज्यादा लोगों ने मोबाइल से अपना ब्यौरा दर्ज कराया है। श्री मोदी ने लोगों से मोढ़ेरा की गौरवशाली विरासत को देखने की अपील

0: प्रधानमंत्री ने आगामी 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती से पहले स्वच्छता अभियानों में जनता की अधिक से अधिक भागीदारी का भी आह्वान किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि भारत किसी अन्य देश की भूमि पर कब्जा करने की इच्छा नहीं रखता है, लेकिन खतरे की स्थिति में अपनी सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता की रक्षा करेगा। नई दिल्ली में आज एक रक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने यह बात कही।
1: भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत अपनी सुरक्षा के साथ किसी भी सूरत में समझौता नहीं करेगा। भारत डायलॉग में विश्वास रखता है, लेकिन यदि कोई देश भारत के खिलाफ आतंकवाद को हवा देगा तो डायलॉग की गुंजाइश वहीं खत्म हो जाती है। जो देश टेररिज्म को अपनी नीति का साधन बनाते हैं, आतंकियों को पनाह और समर्थन देते हैं, उन्हें कड़ा संदेश देना होगा कि आतंकवाद किसी के लिए स्ट्रेटेजिक एसेट किसी भी सूरत में नहीं हो सकता।
0: गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के साबरमती में 1,500 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ साबरमती स्टेशन से देश की पहली द्रवीकृत प्राकृतिक गैस एलएनजी से चालित रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना भी किया। इस रेलगाड़ी में डीजल और एलएनजी दोनों ईंधन प्रणाली का इस्तेमाल किया गया है। गृहमंत्री ने रेलवे के इस कदम को स्वच्छ ऊर्जा के लिए महत्वपूर्ण बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2026 एशियाई खेलों में पुरुष सिंगल्स और स्क्वैश और महिला सिंगल्स स्क्वैश में रजत पदक जीतने पर अभय सिंह और अनाहत सिंह को बधाई दी है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अभय सिंह की यह उपलब्धि उनके वर्षों के कठिन परिश्रम, कौशल और दृढ़ संकल्प का परिणाम है। उन्होंने अनाहत सिंह के शानदार प्रदर्शन की भी सराहना की। प्रधानमंत्री ने महिला लंबी कूद में रजत पदक जीतने पर एनसी जो सोजन को भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि उनके दमदार उत्साहपूर्ण प्रदर्शन से देश को खुशी मिली है। श्री मोदी ने महिला 200 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीतने पर हरिता भद्रा को भी शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि यह हरिता भद्रा का पहला एशियाई खेल है और उन्होंने आत्मविश्वास तथा दृढ़ संकल्प के साथ दौड़ लगाकर पदक अपने नाम किया। भारत ने उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित शतरंज ओलंपियाड में नोना गैपरिनडाश्विली ट्रॉफी बरकरार रखी। भारतीय टीम ने ओपन वर्ग में रजत और महिला वर्ग में कांस्य पदक जीतकर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। पुरुष टीम ने हंगरी के साथ ड्रॉ खेला और टाई ब्रेक के आधार पर रजत पदक जीता। महिला टीम ने जॉर्जिया के साथ ड्रॉ खेलकर देश को कांस्य पदक दिलाया। तिरुवनंतपुरम में पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर 3 मैच की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। 296 रन के लक्ष्य के जवाब में भारत ने 41 ओवर और 4 गेंद में 2 विकेट खोकर 300 रन बनाकर जीत हासिल की। विराट कोहली 88 गेंद में 139 रन बनाकर नाबाद रहे। यह उनके एक दिवसीय क्रिकेट का 55वां और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट करियर का 86वां शतक है। शुभमन गिल ने भी 110 रन बनाए। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: बतर रहा, सतह गीली थी और इस वजह से खिलाड़ियों को संयम, संतुलन और तकनीकी दक्षता का परिचय देना था। हेडलाइन एक्ट रही एंसी सोजन, जिन्होंने महिलाओं की लॉन्ग जंप में भारत को रजत पदक दिलाया। एंसी की पहली जंप 6.49 मीटर की रही, जिसके बाद वो गोल्ड मेडल पोजीशन में लगातार बनी रही। अपने पांचवे अटेम्प्ट में उन्होंने 6.53 मीटर की दूरी तय कर उम्मीदें और पुख्ता कर ली, लेकिन अपने आखिरी अटेम्प्ट में चीन की यिंगयिंग हुआंग ने 6.56 मीटर की कूद लगा उन्हें पीछे छोड़ा और एंसी को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। इसी प्रतियोगिता में भारत की शैली सिंह भी हिस्सा ले रही थी, जिनका बेस्ट अटेम्प्ट 6.42 मीटर का रहा और इसके चलते वो चौथे स्थान पर रही। दूसरा पदक आया पुरुषों की ऊंची कूद यानी हाई जंप से, जहां भारत के सर्वेश कुशारे ने 2.25 मीटर की कूद लगाकर दूसरा स्थान प्राप्त किया। फिर पुरुषों की डेकेथलॉन में तेजस्विन शंकर ने 1974 के बाद इंडिया को पहला पदक दिलाया एशियन गेम्स में। कल का दिन खत्म होने पर तेजस्विन नंबर वन थे, लेकिन आज सरक कर तीसरे पायदान पर आ गए और अंततः ब्रॉन्ज मेडल उन्होंने अपने गले में पहना। स्टैमिना और स्फूर्ति का परिचय पारुल चौधरी ने भी दिया। 3000 मीटर की महिलाओं की स्टीपल चेज में तीसरा पायदान प्राप्त कर पारुल ने दिलाया कांस्य पदक। लेकिन शायद एक सरप्राइज पैकेज बनकर उभरी भारत की हरिता भद्रा, जो महिलाओं के 200 मीटर में कांस्य पदक ले आई। 23.20 सेकंड में अपनी दौड़ पूरी कर हरिता ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। इसी दौड़ में उन्नति बोलेंड भी शिरकत कर रही थी और उन्हें छठा स्थान प्राप्त हुआ। इसके अलावा एथलेटिक्स में कई और एथलीट्स ने अपने आप को पदक की दौड़ में बनाए रखा हुआ है। 400 मीटर बाधा दौड़ में पुरुषों में एस तमिलासरन फाइनल में पहुंच गए हैं, तो वहीं महिलाओं में विद्या रामराज भी फाइनल में शिरकत करते हुए नजर आएंगी। लॉन्ग जंप में मुरली श्रीशंकर और डेविड पट्टूराज भी फाइनल का रास्ता तय कर चुके हैं। पुरुषों की 800 मीटर की दौड़ में मोहम्मद अफजल और कृष्णा कुमार भी फाइनल में खेलते हुए नजर आएंगे। महिलाओं की 4x100 मीटर रिले में तमन्ना, स्नेहा, सुदेशना और अभिन्या की चौकड़ी ने पहला स्थान प्राप्त कर अपना सीजन बेस्ट दिया और फाइनल के लिए क्वालिफिकेशन हासिल किया। तो वहीं पुरुषों की 200 मीटर की दौड़ में अनिमेश खजूर पांचवें स्थान पर रहे और पदक से चूक गए। इस दौड़ में गीली सतह होने के बावजूद थाईलैंड के पुरीपोल बुनसोन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एक नया एशियाई रिकॉर्ड स्थापित किया और केवल 19.88 सेकंड में अपनी दौड़ पूरी की। वो बने स्वर्ण पदक विजेता। तीन पदक बॉक्सिंग रिंग में भी आज सुनिश्चित हुए और बताते हैं मोहम्मद शाहिद आजमी।
1: एशियन गेम 2026 में बॉक्सिंग रिंग से भारत के लिए शानदार खबर है। भारतीय मुक्केबाजों ने आज बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए तीन और पदक पक्के कर लिए हैं। अंकुश पंघाल, परवीन और नरेंद्र ने अपने अपने क्वार्टर फाइनल मुकाबले जीतकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। पुरुषों के 80 किलोग्राम भार वर्ग में भारत के अंकुश पंघाल ने ताजिकिस्तान के नेक्रुस सलीमोव को 5-0 के सर्वसम्मत फैसले से हराया। अंकुश ने पूरे मुकाबले में प्रभावी प्रदर्शन करते हुए निर्णायकों को प्रभावित करते हुए जीत दर्ज की। इस जीत के साथ अंकुश ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है और भारत के लिए पदक सुनिश्चित कर लिया है। महिलाओं के 65 किलोग्राम वर्ग में परवीन ने शानदार जीत हासिल की। उन्होंने उज्बेकिस्तान की नवखोर खादिमो को 5-0 से मात दी। परवीन ने मुकाबले के 3 राउंड में अपना दबदबा बनाए रखा। जीत के साथ ही उन्होंने सेमीफाइनल में जगह बनाई और भारत के लिए एक और पदक पक्का कर लिया। पुरुषों के 90 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग में नरेंद्र ने थाईलैंड के अथापोंग सेकतेप के खिलाफ दमदार प्रदर्शन किया। नरेंद्र ने मुकाबला आरएससी यानी रेफरी स्टॉप कॉन्टेस्ट के जरिए अपने नाम किया। इस जीत के साथ नरेंद्र भी सेमीफाइनल में पहुंच गए और भारत का तीसरा पदक भी सुनिश्चित कर लिया। हालांकि पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में भारत के सचिन सिवाच को निराशा हाथ लगी। सचिन को जापान के शुनसुके किटामोतो ने 5-0 से हराया। इसके साथ ही सचिन का एशियन गेम्स अभियान क्वार्टर फाइनल से आगे नहीं बढ़ पाया। इस तरह बॉक्सिंग में आज भारत ने तीन और पदक पक्के किए, अंकुश, परवीन, नरेंद्र। अब सेमीफाइनल में पदक का रंग बदलने के इरादे से ये तीनों खिलाड़ी रिंग में उतरेंगे।
0: Much like this, two medals were confirmed earlier in squash as well. Youngsters Abhay Singh and Anahat Singh had made it to the singles final and assured at least a silver medal for themselves yesterday. Today, they featured in their respective gold medal matches. First was Abhay Singh in the men's singles final, where he went down to Malaysia's Ian Yeo. Then, teenage prodigy Anahat Singh also suffered the same fate against a Malaysian opponent. Both these players missed out on not just the gold medal, but also on a direct qualification to the LA 2028 Olympics. However, at the end of the day, they wore the silver medal that they had won with pride, and it is just the beginning of

0: something special in Indian squash. India have won its most medals in the shooting range in this year's Asian Games. What happened on Sunday? Vidushi Vats with the report.
1: Starting with the women's trap competition, Neeru Dhanda continues to be one of the standout performers for India. She's currently sitting at number one in the individual standings, hitting 48 out of 50 targets. There is also good news in the team competition. The Indian women's trap team has finished day two in second position, keeping themselves firmly in medal contention as the event moves towards its final stage. Ashma Ahlawat is currently placed 16th individually. Moving to the men's trap event, Kainan Chennai made a brilliant start, producing a perfect opening round by hitting all 25 targets. He followed that with 22 in the next round and is currently placed 11th individually. Shapath Bhardwaj is currently in 22nd position, while the Indian men's team finished day one in 7th place in the team standings. And now, moving from trap to pistol, the Indian women have completed the precision qualification in the 25-meter pistol event. Esha Singh is leading the Indian challenge at this stage. She finished the precision qualification with 290 points, putting her in 6th position. Rahi Sarnobat and Manu Bhakar are next for India, both finishing on 287 points. Rahi is currently placed 15th, while Manu is at 16th. Importantly, this is not the end of the 25-meter pistol competition. There is still more action to come, with the Indian trio looking to build on these scores as the event progresses.
0: दूसरी तरफ हॉकी के मैदान में भारतीय टीम का विजय रथ जारी रहा। हम बात कर रहे हैं महिलाओं की। महिला टीम ने सिंगापुर के खिलाफ 7-0 से जीत पा इस बात को सुनिश्चित किया कि वो ग्रुप स्टेज पर अजय रहे और सर्वश्रेष्ठ स्थान पर अपना ग्रुप स्टेज कैंपेन अंत करे। अब सेमीफाइनल में सामने होने वाली है दक्षिण कोरिया। कुछ इसी तरह के संकेत आर्चरी रेंज से भी देखने को मिले हैं। विदुषी बताती हैं।
1: इन द मेंस रिकर्व टीम क्वार्टर फाइनल, धीरज, नीरज एंड यशदीप प्रोड्यूस्ड अ स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस अगेंस्ट चाइना, विनिंग 5-2 टू बुक देयर प्लेस इन द सेमीफाइनल्स। द वुमेन्स रिकर्व टीम ऑफ अंकिता, कुमकुम एंड कीर्ति डिफीटेड चाइनीज ताइपी 6-0 इन देयर क्वार्टर फाइनल टू मार्च इनटू द लास्ट फोर। एंड इंडियाज मिक्स्ड रिकर्व टीम ऑल्सो मेड इट थ्रू। धीरज एंड कुमकुम हैव बीन क्लिनिकल थ्रू आउट द नॉकआउट स्टेज। दे बिगन विद 6-0 victory over the United Arab Emirates in the round of 16 and followed that up with another commanding 6-0 win over Vietnam in the quarterfinal, and now have a semi-final against Japan to look forward to. So in recurve, India has 3 teams through to the semi-finals. The men's team will face Iran, the women's team will take on China, and the mixed team will face Japan. These 3 recurve semi-finals are scheduled for October 2nd. But the good news from Indian archery does not stop there. The compound teams have also delivered across the board, with India reaching the semi-finals in the men's, women's and mixed team events. In the men's compound team quarter-final, Sahil, Ganesh and Kushal edged past Bhutan 235-232 in a closely fought contest. The women's compound team of Chikita, Jyoti and Pritika also booked their semi-final place, defeating Kazakhstan 233-230. And there was another impressive performance in the compound mixed team event by Chikita and Sahil, who first defeated Mongolia 161-46 in the round of 16 before overcoming Kazakhstan 159-154 in the quarter final. They are now through to the semi-finals, where they'll face Thailand. The compound men's and women's team will both face South Korea in the semi-finals. These 3 compound semi-finals are scheduled for September 30. All in all, it has been an absolutely fantastic day for Indian archery.
0: हालांकि बैडमिंटन कोर्ट से हताश करने वाली खबर है, मोहम्मद शाहिद आजमी से जानते हैं।
2: एशियाई खेलों में बैडमिंटन के लिहाज से भारत के लिए आज का दिन बेहद निराशाजनक रहा। व्यक्तिगत स्पर्धाओं के क्वार्टर फाइनल में भारत के चारों मुकाबले हार के साथ समाप्त हुए और इसी के साथ बैडमिंटन में भारत की पदक की चुनौती भी खत्म हो गई। महिला एकल में भारत की स्टार खिलाड़ी पीवी सिंधु को चीन की विश्व नंबर 4 और ओलंपिक चैंपियन चेन यू फेई ने 3 गेम के मुकाबले में हराया। चेन यू फेई ने सिंधु को 21-11, 18-21, 21-10 से शिकस्त दी। करीब 75 मिनट तक चले मुकाबले में सिंधु ने दूसरा गेम जीतकर शानदार वापसी की, लेकिन निर्णायक गेम में चेन यू फेई ने बढ़त कायम रखते हुए मुकाबला अपने नाम कर लिया। महिला एक

0: कल के एक अन्य क्वार्टर फाइनल में 19 वर्षीय उन्नति हुड्डा ने अपने एशियाई खेल पदार्पण पर जापान की 3 वर्ग विश्व चैंपियन अकाने यामागुची को कड़ी चुनौती दी। उन्नति ने दूसरा गेम अपने नाम किया, लेकिन निर्णायक गेम में उन्हें 16-21, 21-14, 17-21 से हार का सामना करना पड़ा। महिला डबल्स में टीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी मलेशिया की पोली टैन और थीना मुरलीधरन से 18-21, 9-21 से हार गई। वहीं मिक्स डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रस्टो को चीन की फेंग यांग झे और हुआंग डोंग पिंग ने कड़े मुकाबले में 14-21, 21-18, 18-21 से हराया। इस तरह एशियाई खेलों में बैडमिंटन में भारत की चुनौती एक कांस्य पदक जो पुरुष टीम वर्ग में मिला था इसके साथ समाप्त हो गई।
1: फिर चलते हैं वॉलीबॉल की ओर, जहां पर भारतीय टीम ने पुरजोर आगाज किया है। बताते हैं आलोक,
2: भारतीय टीम जो आखिरी बार 1986 के सियोल एशियाई खेलों में पोडियम पर रही थी, ने पूल सी में अपने अभियान की शानदार शुरुआत की। कप्तान जोरम चार्ल्स के नेतृत्व में भारतीय टीम ने शुरुआती मैच में 58वीं रैंक वाली वियतनाम टीम को 3-0 से हराया। हालांकि पहला सेट बेहद करीबी रहा, लेकिन भारतीय टीम ने पहले सेट को 25-23 से जीता। दूसरे सेट में भारतीय टीम 25-21 से जीत करके मुकाबले में भारतीय टीम 2-0 से आगे होगी और तीसरे सेट में भारतीय टीम 25-20 से जीत करके इस मुकाबले को 3-0 से अपने नाम किया। सर्बियाई कोच ड्रैगन महलोविक के मार्गदर्शन में खेल रही भारतीय टीम का अगला मुकाबला कल सुबह 6:30 बजे भारतीय समय अनुसार हांगकांग से होगा।
1: वॉलीबॉल जैसा ही एक रोमांचक खेल है सेपेक टेक्रो, वहाँ भारतीय टीम का आज प्रदर्शन कैसा रहा आइए जानते हैं।
3: India have had a difficult day in Group B. India began their women's doubles campaign against South Korea but went down 0-2. India were back on court later in the day for their second Group B encounter, this time against the Philippines. And the Philippines came away with another straight games victory. So India have now suffered 2 defeats in 2 Group B matches, losing both encounters 0-2. It has certainly been a challenging start for the Indian pair in the women's doubles. India will now look to their remaining group commitments as they aim to keep their campaign alive and finish strongly.
1: इसके बाद चलते हैं भारोत्तोलन यानी वेट लिफ्टिंग की ओर।
0: एशियाई खेलों में महिला वेट लिफ्टिंग के 69 किलोग्राम भार वर्ग में भारत की हरजिंदर कौर 9वें स्थान पर रही। हरजिंदर ने कुल 204 किलोग्राम वजन उठाया। स्नैच में उन्होंने 94 किलोग्राम का सफल प्रयास किया। इसके बाद क्लीन एंड जर्क में उन्होंने 110 किलोग्राम का वजन सफलतापूर्वक उठाया। इस तरह हरजिंदर का कुल स्कोर 204 किलोग्राम रहा। उन्होंने प्रतियोगिता में 9वें स्थान पर रहते हुए अपना अभियान समाप्त किया। इस स्पर्धा में उत्तर कोरिया की सोंग गुक होंग ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 273 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। चीनी ताइपे की चेन वेन हुई ने कुल 232 किलोग्राम के साथ रजत, जबकि बहरीन की इंग्रिड गुएसो ने 229 किलोग्राम के साथ कांस्य पदक हासिल किया।
1: फाइट स्पोर्ट कुराश में भारतीय खिलाड़ियों का आज प्रदर्शन कैसा रहा आइए जानते हैं।
3: इन द मेंस प्लस 90 किलोग्राम कैटेगरी यश कुमार चौहान लॉस्ट हिज राउंड ऑफ 16 बाउट 0-10-2 द डाकिस्तान्स मिरमामादोव, व्हाइल विशाल डिड मेक इट थ्रू टू द क्वार्टर फाइनल्स इन द सेम कैटेगरी बट हिज कैंपेन एंडेड देयर आफ्टर अ 0-5 लॉस टू थाईलैंड्स ईयर ऑन। इन द वुमेन्स 57 किलोग्राम कैटेगरी संगीता वाज बीटन 0-10 बाय द फिलीपींस क्वेलिनो इन द राउंड ऑफ 32। Bharti also went out in the round of 16, losing 0-3 to Iran's Tahereh. So, 4 Indian Kurash athletes in action today and all 4 have now been eliminated.
1: Moving on to fencing.
3: India's women's sabre team saw their Asian Games campaign come to an end in the quarterfinals. The Indian team, featuring Bhavani Devi, Shreya Gupta, Jafarlin J.S. and Shruti Joshi, began the team event with a convincing 45-23 victory over Indonesia in the round of 16. They then put up a strong fight in the quarterfinals but went down 35-45 to Uzbekistan in the last 8. So, India's women's sabre team finishes its campaign at the quarterfinal stage, just missing out on a place in the semi-finals.
1: अन्य खेलों का लबोलुबाब लेकर आलोक,
2: व्यक्तिगत घुड़सवारी ड्रेसेज इवेंट में हृदय विपुल छेरा ने 72.680 और उनके साथी जयसूद ने 71.490 का स्कोर किया। वो क्रमशः 8वें और 9वें पायदान पर रहे। दोनों राइडर्स क्वालिफिकेशन राउंड तक से फाइनल तक पहुंचे थे लेकिन कोई मेडल नहीं जीत पाए। गौरतलब है कि इससे पहले 2022 के एशियाई गेमों में भारत के लिए अनुषा अग्रवाल ने इसी इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता। वहीं बात करते हैं सर्फिंग की। पहली बार एशियाई खेल में शामिल किए गए सर्फिंग से आज भारत के लिए मिक्स रिजल्ट रहा। मेंस शॉर्ट बोर्ड में भारत के किशोर

0: कुमार अबारसू राउंड वन में 9.33 स्कोर के साथ पहले स्थान पर क्वालिफाई किया। राउंड टू में उन्हें बाय मिला। तीसरे राउंड में उनका मुकाबला चीन के वेंग सॉन्ग से होगा। शिवराज बाबू ने 7.03 का स्कोर किया और राउंड टू में उनका मुकाबला था आज ईरान के दाऊद खादिर के साथ। उन्होंने इस मुकाबले को जीत लिया है 8.96 के मुकाबले 3.60 के स्कोर के साथ। तीसरे राउंड में उनका अगला मुकाबला फिलीपींस से होगा। वहीं दूसरी ओर बात करते हैं वुमेन्स शॉर्ट बोर्ड में कामली प्रकाश और शांति गोयन ने राउंड टू का मुकाबला जीता, लेकिन राउंड तीन में वो अपना मुकाबला हार गए। इस प्रकार एशियन गेम्स से उनका सफर खत्म हो गया है। दोनों भारतीय खिलाड़ी 90 पायदान पर रहे।
1: इसके बाद भारत 4 गोल्ड 16 सिल्वर और 17 ब्रॉन्ज के साथ कुल 37 मेडल लेकर 12वें स्थान पर है। चीन पहले, जापान दूसरे तो दक्षिण कोरिया तीसरे पर। अब बात करते हैं कल की। सोमवार 28 सितंबर को भारतीय प्रशंसकों की निगाहें होने वाली है क्रिकेट के मैदान पर, क्योंकि भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम आगाज करने वाली है अपने कैंपेन का। क्वार्टर फाइनल में सामने होगी अफगानिस्तान की चुनौती और बारिश के चलते टीम को अभ्यास करने का ज्यादा मौका मिला नहीं है। उसके बावजूद कप्तान श्रेयस अय्यर कहते हैं कि हम पूरी तरह तैयार हैं।
2: इस बारिश है वो तो हम रीजन नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हमने डिसाइड किया है कि वी आर अ बंच ऑफ प्रोफेशनल्स एंड ऐसे सब हर्डल्स आते रहेंगे और हमें मेंटली वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर द सिचुएशन इज गोइंग टू बी। प्राइमरी इंपॉर्टेंस इज टू कम एंड प्ले द मैच। यहाँ का विकेट एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड में नहीं सेट हो सकता है, बट जैसे कि मैंने कहा पहले कि अडैप्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। चैलेंजिंग तो होगा, डिफिकल्ट होगा, हर एक टीम के लिए होगा।
1: हॉकी के मैदान पर भारतीय पुरुष टीम खेलने वाली है अपना आखिरी ग्रुप स्टेज मुकाबला बांग्लादेश के विरुद्ध। सेमीफाइनल से पहले मोमेंटम बरकरार रखने के लिए ये मुकाबला है जरूरी। तो वहीं बॉक्सिंग रिंग में उतरने वाले हैं कपिल और प्रिया घंगस अपनी अपनी क्वार्टर फाइनल बाउट में। इसके साथ ही ओलंपिक पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन पर भी नजरें होंगी। देन इन द आर्चरी रेंज इंडिविजुअल कॉम्पिटिशंस विल स्टार्ट। वी विल हैव आवर आईज ऑन मेन एंड वुमेन फ्रॉम बोथ रिकर्व एंड कंपाउंड आर्चरी। इन एथलेटिक्स गुलवीर सिंह एंड यूनुस शाह विल बी फाइटिंग फॉर अ मेडल इन द 1500 मीटर मेन्स रेस। मीनवाइल पारुल चौधरी हु वन अ गोल्ड मेडल इन द 5000 मीटर इन द प्रीवियस एशियन गेम्स विल बी कम्पीटिंग टुमारो। इन द मेन्स लॉन्ग जंप फाइनल मुरली श्रीशंकर एंड डेविड पट्टूराज विल बी फीचरिंग। बाधा दौड़ में 400 मीटर में पुरुषों में तमिला सरन तो महिलाओं में विद्या रामराज फाइनल खेलेंगी। भारत की मिक्स्ड रिले टीम भी 4x100 मीटर की दौड़ में फाइनल खेलते हुए नजर आएंगी। सीमा विल ऑल्सो फीचर इन द वुमेन्स डिस्कस थ्रो फाइनल। तो वहीं पुरुषों की 3000 मीटर स्टीपल चेज में सूबेदार अविनाश साबले शिरकत करते हुए दिखेंगे। इन शूटिंग आईज विल बी ऑन द ट्रायो ऑफ ईशा सिंह, मनु भाकर एंड राही सरनोबत, एज वेल एज द मेन्स एंड द वुमेन्स टीम इन द ट्रैप कॉम्पिटिशन। इसके अलावा सर्फिंग में किशोर कुमार और शिवराज बाबू पर होगी नजर। वॉलीबॉल में पुरुषों के सामने होगी हांगकांग, तो सेपक तक्राव डबल्स में महिलाओं के सामने जापान। और कल एक बार फिर इसी समय आकाशवाणी की टीम हाजिर होगी भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन का लबोलुबाब लेकर। फिलहाल मुझे दर्पण टिकिया को एडिटर विशाल कुमार और प्रोड्यूसर शाहनवाज खान के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।
3: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
4: మీరింతవరకు 20వ ఆసియా క్రీడలు 2026 రోజువారీ ముఖ్యాంశాల సమాహార ప్రత్యేక కార్యక్రమాన్ని విన్నారు. ఆకాశవాణి విజయవాడ కేంద్రం. ప్రసార విశేషాలు. రేపు ఉదయం 7:15 ప్రసారమయ్యే ఉదయరేఖల కార్యక్రమంలో గుత్తాధిపత్యం మరియు నిర్బంధ వాణిజ్య పద్ధతుల చట్టం MRTP కమిషన్ గురించి శ్రీ రాపర్ల వెంకటేశ్వరరావు గారి సూచనలు వింటారు. 9:00 కర్ణాటక శాస్త్రీయ సంగీత కార్యక్రమంలో శ్రీ మధురై ఎంపీఎన్ సేతురామన్ శ్రీ పొన్నుస్వామి గారిల నాదస్వర వాయిద్యం వింటారు. 4:45 రంగస్థలి శీర్షికన సతీ సక్కుబాయి నాటకం నుంచి జ్ఞానయోగి పాత్ర పద్యాలు వింటారు. నిర్వహణ శ్రీ జె జగన్మోహన్ రావు, హార్మోనియం శ్రీ జె శ్రవణ్ కుమార్. రాత్రి 7:15 వ్యవసాయ పాఠశాల రబిలో సాగుకు అనువైన 6 తడి పంటల యాజమాన్యం నంద్యాల జిల్లా అనంతపురం మండలం ప్రాంతీయ వ్యవసాయ పరిశోధనా స్థానం ప్రధాన శాస్త్రవేత్త డాక్టర్ ఎం విజయశేఖర్ బాబు గారు. 7:45 వికసిత్ భారత్ ప్రధానమంత్రి ఆయుష్మాన్ భారత్ హెల్త్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మిషన్ పథకం గురించి